हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की बैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।

0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, स्वामी विवेकानंद का कथन है, आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेंगे आप श्री रामचरितमानस गान भाग 186। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महिपाल पर।

सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनेगा थैलेसीमिया की बीमारी। डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता अनिता पटेल। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 1:00 बजे से।

सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से। सखी सहेली ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे से। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनाएंगे तराने नए पुराने। और शाम में झरोखा सुनेगा 6:30 से। शाम 6:35 से संध्या रंजन। 6:45 से संगीत सरिता। शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनेगा विश्व प्रेमी सम्मेलन। लेखन मदन मोहन खन्ना का, निर्देशन वीना नाथ का। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 से, आपके लिए रात 9 बजे से। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे से। आलेख एवं सर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात 10:30 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 186।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानी की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानी की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: संगीत सरिता में आज से हम आरंभ।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:45 हुए हैं। ये जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार सुनिएगा। ये सभी समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति कार्यक्रम लोकरंग। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात।

8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित 8:15 पर अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। ये भी अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आठ बजकर 30 मिनट से सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम भारत की गूंज का विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। 9:30 पर सुनिएगा आज की फनकार, ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे सुनिएगा अपना चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे समय रहेगा रंग तरंग कार्यक्रम का, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 12 बजे सुनिएगा यादों की महफिल, ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

1:05 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित 2:00 सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार भी अनुप्रसारित होंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुनेंगे आप विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा सदाबहार नगमे।

0: अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 3 बजे समय रहेगा सखी सहेली कार्यक्रम का, विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। 4 बजे सुनिएगा हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। शाम 5 बजे आप सुनेंगे ई फरमाइश कार्यक्रम। छह बजे सुनिएगा हिंदी समाचार, अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। 6:20 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनिएगा और 6:30 पर युवा उमंग कार्यक्रम का समय रहेगा। 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर हमारे गांव कार्यक्रम सुनिएगा। 8 बजे लोकमंच कार्यक्रम आप सुनेंगे और 8:30 पर खुला आकाश कार्यक्रम सुनिएगा। 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुनेंगे आप विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। 9 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 9:15 से सुनेंगे आप विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम। 10:00 सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। 11:00 सुनेंगे आप राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।
1: 'रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और ये

0: को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय,
5: विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: अभी आपने जाने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगरपालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को

0: 60 kilometers per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets in Dharmashala last night, chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings. Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी समाचार अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर. यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र. सुबह के 7:10 हुए हैं. आइए अब सुनते हैं आप और हम मिलकर कार्यक्रम लोकरंग.

0: नई सुबह नई सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी असार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी गीत संगीत के साथ। लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, यू है हमारी हरियाणवी संस्कृति का मजबूत आधार। कार्यक्रम की पहली रागिनी किस्सा नौरतन। बात उस टाइम की, राजा धर्म सिंह की बेटी नौरतन ने पिता के स्वामी शरद दर्दी की, उसकी शादी भी नौरतन नाम के शख्स से होनी चाहिए। राजा के अलकारे नौरतन ने टोके लिए, शादी हो जाए, जाज में बिठा दिया, पैदा कर दिए। वो लड़का नौरतन लड़की ते बूझन लग गया, फेरा पर कौन कौन थी, वह कौन थी, फलानी कौन थी, दिकड़ी कौन थी। लड़की नौरतन क्या बताती है उस मौके की बात मास्टर सतबीर भैंसवाली और साथियों की आवाज में।
1: ये रे कौन थी वा?

उस गोरी का भेद बता दे जिसका जमखरी लाल था, लाल था दुपट्टा जिसके हाथ

0: ठाठा सुडोल गोल बोल पे कमाल ओ जी रमक लाडुआ की
1: वाह।

0: बात उस टाइम की जब ईर की शादी अटखेड़ा के अखन बादशाह के साथ हो जाए, लेकिन आखिरी टाइम पे दूध मलाई का लोटा लेके वो ईर काले डेर में रांझे पाली के पास पहुंच जाए। दरवाजा खटखटाया, रांझा भरा बैठा था। उस मौके पे ईर और रांझे के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की बात रणबीर बड़वासनी और नीलम चौधरी की आवाज में।
1: All right।

शालकोट की राजा सुलेमान की रानी नूनादे पूर्णमल पे बद चलने का झूठा आरोप लादे है, लेकिन वो तो पूर्ण भक्त था, सच्चा था। अपनी मौसी को बहुत समझाया, पिता सुलेमान को भी अपनी बहुत सफाई थी, लेकिन वह तो झूठी तो मदला राखी थी। उस मौके पे वो पूर्णमल की के है।

0: रानी नूनादे के कहने पे राजा सलेबान के अलकारी पूर्ण का कत्ल करने के लिए तेगा उठा ले हैं। उस मौके की बात
1: अपने तेगे म्यान से बाहर निकले।

चक चक कर चक्की सी जोवने लगी। देख देख पने करमाने दुनिया रोवने लगी। एर पूरन मलका हाल देख करमाने।

ये था आज का हरियाणवी गीत संगीत कार्यक्रम लोकरंग। इसी के साथ थे आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे वन भैया ने राम राम।

0: किंतु पुराना बेहतरीन।
1: दिल चीज़ क्या है?
2: नया श्रेष्ठ है।
3: केसरिया तेरा।
0: किंतु पुराना श्रेष्ठता।
2: नया उत्कृष्ट है।
3: तेरी
0: किंतु पुराना अनमोल।
2: नया अनूठा है।
0: किंतु पुराना अनुपम।
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
4: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
5: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
6: पाप के नगमे मुझे कर दे।
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
7: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
8: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
9: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम लोकरंग FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया का नमस्कार। श्रोताओं आज है 12 मई सन 2026, दिन मंगलवार, शक संवत 1948 और विक्रम संवत 2083। दशमी तिथि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:44 तक। मास ज्येष्ठ है और कृष्ण पक्ष है। दोस्तों आज जो हिसार का मौसम है वो काफी गर्म रहने की संभावना है। दिन में तापमान लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और तापमान जब 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास महसूस हो सकता है। आसमान ज्यादातर साफ से हल्के बादलों वाला रहेगा। सुबह हल्की गर्मी, तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहा और दोपहर को तेज धूप, लू जैसे हालात रहने की संभावना है। शाम को हल्की हवा से थोड़ी राहत मिल सकती है। बारिश की संभावना बहुत कम है लेकिन हरियाणा के कुछ इलाकों में मौसम बदलने के संकेत हैं। आज के लिए हमारी यही सलाह है कि दोपहर 2 से 4 बजे तक धूप से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के सूती कपड़े पहने। श्रोताओं सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी भी घातक नहीं होती। असली मायने रखता है आगे बढ़ते रहने का साहस। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी सफलता और असफलता दोनों का सामना करता है। कई बार जब हम सफलता मिलती है तो हम सोचने लगते हैं कि अब तो सब कुछ हासिल हो गया। वहीं असफलता मिलने पर मन टूट जाता है और हम हार मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो सफलता हमेशा रहती है और न ही असफलता। सफल व्यक्ति ही वही होता है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। यदि कोई इंसान गिरकर फिर से उठने का हौसला रखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है, धैर्य, मेहनत, अनुभव और खुद पर विश्वास। वहीं सफलता हमें विनम्र बने रहने की सीख देती है। जीवन एक यात्रा की तरह है। रास्ते में कभी धूप मिलेगी तो कभी छांव, कभी लोग तारीफ करेंगे तो कभी आलोचना। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में सफलता का स्वाद भी चखता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो निराश मत होइए। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। अपने अंदर के साहस को पहचानिए और विश्वास रखिए कि आपका हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। सफलता मिलने पर कभी भी घमंड ना कीजिए।

विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सभी एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं।

इसी के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। सुबह की 8 बजने वाले हैं। आपसे चंद पलों के बाद सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर

0: पत्थरों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और चलिए आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में योद्धा फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह नीति मोहन ने गाया इसे, कुणाल वर्मा ने लिखा और संगीत से संवारा तनिष्क बागची ने।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं बागी थ्री फिल्म से। इसे लिखा और संगीतबद्ध किया है रेनी बंडाली और तनिष्क बागची ने। निकिता गांधी की आवाज है, डू यू लव मी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए दुकान फिल्म का गाना मोहित चौहान और

अभी आप सुन रहे थे दुकान फिल्म का ये गाना। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में।

0: हसन तुराज और नासिर फराज ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था शैल प्रीतेश और नितिन शंकर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धौटन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए वेदा फिल्म का गाना। प्राजक्ता शुक्रे और हिमानी कपूर की आवाजें हैं इस गाने में। रैप कांश गाया है मनन भरद्वाज ने, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भरद्वाज ही।

अभी आप सुन रहे थे मोहसिन शेख, ज्योति टंगरी और साथियों की आवाजों में सूरज पे मंगल भारी फिल्म का गाना। दोस्तों वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, चुटकुलों कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जिजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के एम एम सी सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान की तर्ज। पिया मिलेंगे

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का।

0: व्याख्यान है।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? जोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

0: बजता ही रहूं।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: है चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।
0: वो जब याद आए

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

हृदय गति रुक जाने से मुंबई में अभिनेता महिपाल का निधन हो गया। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रही कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 10 बजे हैं और अब समय है आप सभी के चहेते कार्यक्रम नमस्ते हिसार का।

नमस्ते हिसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप सभी की अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया का नमस्कार। दोस्तों नमस्ते हिसार, जहां सुबह होती है नई उमंग, नई जानकारी और अपने शहर की मिट्टी की खुशबू के साथ। अगले एक घंटे हम बातें करेंगे हिसार की, ताजा हलचल की, स्थानीय समाचारों की, रोचक जानकारियों की, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की और प्रेरक व्यक्तित्व की, सेहत की, संस्कृति की और भी बहुत सारी। साथ ही सुनेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत जो बना देंगे आपके दिन को खास। तो चलिए अब हो जाइए तैयार आज के नमस्ते हिसार कार्यक्रम में हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थानीय समाचारों की, यानी कि हरियाणा के मौसम ने ली करवट। 5 जिलों में हुई बारिश, आज ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी। दोस्तों हरियाणा में सोमवार को मौसम बदला और हिसार समेत 5 जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सोमवार को मौसम में परिवर्तन हुआ। सुबह के समय बादल छाने के साथ ही हिसार के अलावा सिरसा, हांसी, भिवानी, झज्जर में हल्की वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को प्रदेश में वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की वर्षा के चलते अधिकतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

दोस्तों, हिसार नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर लगातार देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और कचरे के ढेर लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हिसार स्वास्थ्य विभाग ने कम लिंगानुपात मिलने पर जो है कार्रवाई की। CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित खरीफ कृषि मेले में आधुनिक खेती और नई कृषि तकनीकों पर किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

तो दोस्तों अब बारी है आपके कार्यक्रम में शामिल होने की, यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जिनका जवाब देंगे आप। और जो जवाब सबसे पहले देगा सुनाया जाएगा उसकी पसंद का गीत। किस तरह से भाग लेना है हमारे प्रश्नों के जवाबों में वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको आपके व्हाट्सएप सेक्शन में जाना है आपके फोन के, और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272, जी हाँ, इस नंबर पर आपको सबसे पहले सवाल का जवाब लिखना है, उसके बाद अपना नाम, जगह का नाम और फिर अपनी पसंद का गीत लिखकर हमें भेज दीजिए। तो चलिए अब बता देते हैं आपको हमारे आज के पहले प्रश्न के बारे में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी मद्रास। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की? मुंबई, सूरत, मुल्तान या मद्रास? जल्दी से अपना जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर लिखकर भेज दीजिए। तब तक मजा लीजिए इस प्यारे से गीत का।

हमारा जो आज का पहला प्रश्न था वो था, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां पर स्थापित की? हमारे ऑप्शंस थे मुंबई, सूरत, मुल्तान और मद्रास। इस प्रश्न का सही जवाब है सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कारखाना 1611 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम और पोटापुल्ली में स्थापित की, लेकिन उपरोक्त जो भी हमारे विकल्प हैं उनमें से जो सूरत हमारा जवाब है वो बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो जवाब दिया है हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है, तो सबसे पहले जिनका जवाब हम तक पहुंचा है वो है ढाणी कुतुबपुर जिला, हांसी से रामधारी आवाना, अवनी आवाना, प्रियांशी आवाना, रेयांशी आवाना, ओजस अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत आवाना। ये है मंटू शर्मा स्टेरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। इन्होंने भी आज के प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। गांव जेवरा हिसार से है वीरेंद्र भ्याना, शमशेर भ्यान और सुरेंद्र भ्यान, मनोज भ्यान। हमारे ये श्रोता हैं सुंदर नगर हिसार से मयूर गुजर, पंकज, शिवम, प्राची, नैन्सी, सुलेख और सुरेश गुजर। ये हमारे श्रोता है उमेश सांगवान, गांव पेंटावास, कला तहसील, जिला चरखी दादरी से, और रमेश वर्मा हिसार से। इन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारा आज के पहले प्रश्न के सही जवाब देने पर। हम सुनाएंगे रामधारी अवाना जी की पसंद का गीत, लेकिन पहले जान लीजिए आज का जो दूसरा प्रश्न है उसके बारे में। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, अलीगढ़, कालीकट या गुंटूर। इस प्रश्न का जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722523272 पर जल्दी से लिख भेजिए। तब तक सुनते हैं हम रामधारी अवाना जी के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न था, किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? हमारे ऑप्शंस थे मुंबई, अलीगढ़, कालीकट या गुंटूर। इस प्रश्न का सही जवाब है गुंटूर। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रारंभिक दौर में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक माना जाता था। इनके नाम की एक टावर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और इस प्रश्न

का जो जवाब दिया है, सबसे पहले दिया है जवाब तस्वीर जी हैं हिसार से, और ये हमारे श्रोता हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से, रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी, रियांशी, औजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत, उमेश सांगवान गांव पेंतावास कला तहसील जिला चरखी दादरी से, गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान, सुंदरनगर हिसार से मयूर गुर्जर, पंकज, शिवम, प्राची, नैन्सी, सुलेख और सुरेश, और ये हमारे श्रोता हैं रमेश वर्मा हिसार से। इन सभी ने जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था वो अपनी पसंद का गीत शायद लिखना भूल गए, तो चलिए उनको प्यारा सा गीत हम सुनवाते हैं, हमारी पसंद का, उम्मीद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगा।

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुलिस?
1: मिस सीमा
4: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों, प्रेरक व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे हिसार की मिट्टी से निकले एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने संघर्ष को सीढ़ी बनाया, मेहनत को अपना हथियार बनाया और अपनी लगन से इतिहास रच दिया। ये कहानी है डॉक्टर दलबीर भारती की। दोस्तों, हरियाणा की धरती हमेशा से मेहनतकश और जुझारू लोगों की धरती रही है। इसी मिट्टी के एक छोटे से गाँव बनमंदोरी, जिला फतेहाबाद में 14 अप्रैल 1960 को जन्म हुआ डॉक्टर दलबीर भारती जी का। साधारण परिवार, सीमित संसाधन और बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ। कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हो तो हालात रास्ता नहीं रोक सकते। डॉक्टर भारती जी ने इस बात को सच करके दिखाया। बहुत कम उम्र में विवाह हो गया और परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। मैट्रिक के बाद सरकारी नौकरी का इंतजार करने के बजाय उन्होंने सिलाई का काम किया, मेहनत की और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने ITI नाथूसरी चोपटा से इंग्लिश स्टेनोग्राफी की पढ़ाई की और पूरे संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 1980 में उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू की, लेकिन उनके सपने इससे कहीं बड़े थे। दिल में नौकरी और रात में पढ़ाई, इसी मेहनत के दम पर उन्होंने BA फिर MA की डिग्री हासिल की। और फिर आया वो पल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 1987 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के लिए चुने गए। वे हरियाणा के उन शुरुआती अधिकारियों में रहे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर IPS बनने का गौरव हासिल किया। महाराष्ट्र कैडर में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। मुंबई, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग और नागपुर जैसे शहरों में अपनी सेवाएं दी। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे खास बात सिर्फ एक IPS अधिकारी बनना नहीं था। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। IPS रहते हुए उन्होंने LLB की और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से PhD भी पूरी की। उनकी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सराहा।

गया और यह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में रेफरेंस बुक के रूप में भी इस्तेमाल हुई। समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत

दोस्तों, डॉक्टर दलबीर भारती जी की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कभी इंसान को रोकते नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। हालिया उपलब्ध जानकारी के अनुसार डॉक्टर दलबीर भारती आईपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में गुरुग्राम में एक लीगल कंसल्टेंट, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। वे शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यों में लगातार योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हिसार की धरती से निकले एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और समाज के लिए मिसाल कायम की।

0: आइए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
3: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
5: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

चलते चलते अब बात कर लेते हैं हमारी हरियाणा की, हमारे हरियाणा की सांस्कृतिक परंपराएं। दूध दही का खाना और सादा सा बाणा, यही पहचान है हमारे प्यारे हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा सिर्फ खेतों और खिलाड़ियों की धरती ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का भी अनमोल खजाना है। यहाँ की मिट्टी में अपनापन है, लोक गीतों में भावनाएं हैं और रीति रिवाजों में सादगी की सुंदरता भी छुपी हुई है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा बेहद सरल और आकर्षक होती है। महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे, दामन और ओढ़नी पहनती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता, धोती, पगड़ी में नजर आते हैं। यहाँ की पगड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की पहचान मानी जाती है। हरियाणा की जो लोकगीत हैं, वो जीवन के हर रंग को दर्शाते हैं। खुशी, विवाह, त्योहार, खेती और रिश्तों की मिठास। फाग, रागनी और सांग यहाँ की प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं, और घूमर और खोरिया जिसे लोक नृत्य उत्सवों में विशेष आकर्षण होते हैं। हरियाणा में सांग लोक नाट्य कला का एक बहुत बड़ा महत्व है, जहां मनोरंजन के साथ साथ समाज को संदेश देने का भी माध्यम रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता, जिन्होंने रागनी और सांग को नई पहचान दी। हरियाणा का भोजन सादा लेकिन पौष्टिक होता है। बाजरे की, मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, घर घर का बना सफेद मक्खन, लस्सी यहाँ की खास पहचान है। यहाँ अतिथि का स्वागत दिल से किया जाता है, राम राम और एक गिलास छाछ के साथ। तीज, बैसाखी, होली, दिवाली जैसे त्योहार यहाँ बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सावन के झूले, लोकगीत और मेले ग्रामीण संस्कृति की सुंदर झलक दिखाते हैं। सूरजकुंड मेला हरियाणा की कला और हस्तशिल्प को विश्व भर में पहचान दिलाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ का भाईचारा। गाँव की चौपाल, घर का आंगन, लोग मिल बांट कर खुशियाँ मनाते हैं। बड़ों का सम्मान और मेहमानों का आदर यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, हरियाणा की संस्कृति हमें सिखाती है कि आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। यही परंपराएं तो हमारी पहचान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अमूल्य धरोहर भी है। माटी की खुशबू, रिश्तों का प्यार, यही है अपना हरियाणा शानदार। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की मिठास के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज की बातें, जानकारियां, गीत और किस्से आपके दिल को जरूर छू गए होंगे। याद रखिए, जिस समाज की संस्कृति मजबूत होती है, उसकी पहचान हमेशा जीवित रहती है। अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों और अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई मुस्कान और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हर सुबह का स्वागत मुस्कान के साथ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्ते हिसार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरि ओम शरण की गाई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे। चित्रा सिंह की आवाज में धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहां भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए
1: अपनी

0: यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि इनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

नुमाइश एल्बम से पंकज उधास की आवाज में आपने सुनी ये गजल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मित्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर

Faiz and Varney is gaane ko फैज अनवर ने इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस

निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी. वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी. विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई. पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था। बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हिशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे अरे ए,

साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल। एक तो ये मौसम है।

सीता और गीता फिल्म से। ये दो गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं, उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जी किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एसएन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मैत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मैत्रा की आवाजें थी और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में। उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए हैं। आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनको प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

Allah'ın

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत न बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बड़े बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं शिफाली कपूर, वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट।

0: और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छांव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान ख्वाब उम्मीद चांद टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 1:05 होने को है। अब से कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार, इसके बाद 1:10 पर जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के आरसीसी पाइपलाइन के कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने यह निर्देश बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी रीमॉडलिंग परियोजना के औचक निरीक्षण के दौरान दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने

0: 41 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के रिमॉडलिंग कार्य को मंजूरी दी थी और इस परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो तथा सभी लंबित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने से चरखी दादरी शहर सहित आसपास के लगभग 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे क्षेत्र के लगभग 2,30,000 लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं स्थायी बनेगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था से लगभग 1.5 लाख शहरी निवासियों तथा लगभग 80,000 ग्रामीण नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटरी के रिमॉडलिंग कार्य पूरा होने के बाद किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा पानी की आपूर्ति अधिक सुचारू और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। मेरा युवा भारत एवं केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जागरूकता कार्यक्रम और निबंध लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से परिचित कराना और उनमें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व, भारत की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है। रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं। सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में समा रहे हूं उन्हें। और शाम है दिल की कसम, आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के घीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे।

तो वहीं एक साथ ही दिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है। संगीत में सफर का इंतजार रहेगा, तो इंतजार खत्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

0: प्यार है तुमसे
1: सहाना
0: जाना कहो प्यार है तुमसे
1: हाँ हाँ है
0: कहो प्यार है तुमसे ओ जाना कहो
2: मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है वाह भाई वाह एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाँ जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है। आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भी दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है। लगता है यज्ञ सफल हुआ लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई। मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली पानी नदियों की कलकल झरनों का कोलाहल चिड़ियों की चहचहाहट हो और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ गीतों का आनंद ले रहे हैं हम आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुंच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं कुछ अनसुना गीत कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है। ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली पिंड नहीं है बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेशवाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है क्योंकि ये मानवीय भावनाओं विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पैगाम लाती है, आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जिजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नजर आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती थी लगती है। मैं हर रोज ही, कल ही मैंने एक फोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है, माता पिता के लिए गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। उन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर न भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कॉमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी, पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हूँ, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और जरा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए जरा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आजादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा जमीन

उन पर उतर आए और मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं उससे मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूंगा कि मुझे वो हिम्मत फराहम करे कि मैं

लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते, लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं जरा बताइए। और बात चली है चांद की, तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही है, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा यादगार शाम 27 मई साल 16 की

है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें, लिखते हैं, मुझे बहुत सुहाती है। सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नजारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया।

से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप पढ़ने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করি।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय

0: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन

0: प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट

दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: जुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कसमें होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कसमों की और मोहब्बत में फिर कहां का हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी मेयर ने, और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। आइए सुनते हैं।

मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: Haley. कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ,
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ,
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो

0: ये सुनने को मिलती है। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कहे जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
1: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
0: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
1: जी
0: हैं।
1: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
0: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
0: जी।
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पर भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
0: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह की व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनकी संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यही रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग की जो उसकी पत्तियां होती है ना जब हम गुजरते हैं रास्तों से जो रास्ते पर चादर से बिछी होती है सच में ऐसा लगता है
0: इसके ऊपर चले नहीं है ना
1: और गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं जब वो बहुत छोटा होता है तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना बढ़िया है ना पानी डाला सब पूछते हैं एक दूसरे से और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहां वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए कहीं छांव मिल जाए। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है
1: हाँ।
0: नहीं तुम आगे वो रस्ते तक जाओगी ना बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना हाँ। है ना कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती
0: है। बिल्कुल मवेशी घुस जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी।
1: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं
0: सही
1: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीन

0: पत्तियों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्या है इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों बहुत दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में

0: लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन

0: मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: चलिए।

0: वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
2: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक है, उनकी CEO है, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
2: क्या बात।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों की उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को। ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन जहां उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: पर ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने यह

0: पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही।
0: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे
1: जी। और वक्त हो चला एक गीत का
0: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में सौ सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के

0: खेत या अन्य बड़े औजार बनाने वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
0: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
1: क्या बात है, इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
0: तो गीत सुने अभी
1: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं, और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहां इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चिंजल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मी में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहां ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल, कि आप वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में हमें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े तेड़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी हुई सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जब आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं,
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़ी चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुनिए गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है इनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम

0: लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई गीत हम क्यों ना सुन ले।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारे स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ।

0: लेकिन उस वक्त भालबा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो टीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसे लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसे आपकी फरमाइश पे जैसे होता है, हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
0: बहुत पुरानी जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें से उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बंबई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहां गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं,
1: उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया,
0: बोले उसी रोल के लिए
1: नहीं, हाँ। हमारे पास एक नाटक है जयवंत दर्वी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए।

0: लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नहतर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर

0: वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतनी जवान हैं, ये कैसे हुआ? तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो उनकी एक्टिंग स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरी जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छविलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंड्स अप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलाने से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन सी शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे हैं, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा,

0: ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, जयप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहां के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी,
1: महारानी का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूं, बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए इसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी। जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया, एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: उत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया।

0: जी,
1: वो ही आपका इसमें जी हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले

0: मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है। ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है। मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक किमयागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक किमयाई हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी हिसार है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति ई फरमाइश।

आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। आकाशवाणी हिसार पर पसंदीदा कार्यक्रम ई फरमाइश लेकर हाजिर हूं। आज के इस सफर का हम सफर, मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, ई फरमाइश सुनने वाले तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत। जहां शब्दों में महकते हैं जज्बात, गीतों में धड़कती हैं यादें, और हर फरमाइश अपने साथ लेकर आती है अपने किसी प्यारे दोस्त का पैगाम, किसी दोस्त की मुस्कान, और या किसी खास एहसास की मीठी सी खुशबू। श्रोताओं, मोहब्बत, दोस्ती, यादें और खूबसूरत नगमों के इस सफर पर जहां दिल भी गुनगुनाएगा और इस धूप से भरे मौसम में ये गीत आकाशवाणी हिसार से जो आप सुनेंगे, आपके दिलों को थोड़ी सी ठंडक भी पहुंचाएंगे। तो इस सरगमी सफर को आइए श्रोताओं, करते हैं आरंभ। श्रोताओं, कुछ रिश्ते आवाज से बन जाते हैं, कुछ गीतों से दिल सज जाते हैं। यूं ही नहीं लोग सुनते हैं आकाशवाणी हिसार, कुछ लोग सुनकर अपने आप मिल जाते हैं। इन गीतों से आप श्रोताओं जुड़ते हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। तो इस महफिल को शुरू करते हैं श्रोताओं, आपके दिल धड़काते हैं और वक्त हुआ है पहले खूबसूरत नगमे का। जी हाँ, ये खूबसूरत नगमा हमारे तमाम श्रोताओं ने अनुरोध किया है। और देखिए, फिल्म रहेगी अनुरोध, 1977 में ये फिल्म आई। किशोर कुमार की दिलकश आवाज के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा। राजेश खन्ना साहब और सिंपल कपाड़िया पर यह गीत फिल्माया गया। तो पसंद हमारे इन तमाम चाहने वालों की रहेगी। और श्रोताओं, आपसे निवेदन कि एक फरमाइश भेजने के बाद आप धैर्य रखें, सुकून रखें, इत्मीनान रखें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी उस दिली ख्वाहिश को कार्यक्रम में जगह देने की। अन्य श्रोता जो भेजते हैं radiohisar@gmail.com पर अपनी फरमाइश, वे कहीं पीछे न रह जाएं। तो सबका साथ रखिए, सबको साथ लेकर आगे बढ़िए। तो हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में, लीजिए अब आगे, और हमारे श्रोता रहेंगे हमारे साथ साथ। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, शहनाज अब्बासी और यशफ अब्बासी। कार्यक्रम की पहली फरमाइश के लिए मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, 17 एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे रणजीत कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत और कांचन परिवार के तमाम सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा, अनस और रेहान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और लीजिए, बिहार स्टेट डुमराव से अस्मा अंसारी, आमना प्रवीण, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्ला अंसारी और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी भट्ट, छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमिन। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब बिहार से रुक करते हैं पंजाब की ओर। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और तमाम गोदारा परिवार के सदस्य। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। इन तमाम श्रोताओं के साथ चंद्रनगर सहारनपुर से
आशा डोमिन, सोनाली डोमिन, सुरेश डोम, पथिक डोम, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा और प्रभा रानी जाटव। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। और लीजिए अगली ईमेल, हम शामिल कर रहे हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जस्नीन खान, ये तमाम श्रोता रहेंगे हनुमानगढ़ राजस्थान से। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार, हिमानी जाखड़ और तमाम इनके मित्रगण। और लीजिए दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे श्रोता रहेंगे बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया गिरडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, खदान कोठी, बोरो पार चौक बसबेरिया, पश्चिम बंगाल से मुन्नी देवी शो, जय प्रकाश साव, बसंतलाल साव, रिया जिया, तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और तमाम परिवार के सदस्य। तो सुनते हैं इन तमाम श्रोताओं की पसंद के साथ इनके अनुरोध पर फिल्म अनुरोध का ये गीत, 1977 में आई फिल्म जिसका गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से ई फरमाइश में।

खूबसूरत एहसासों के साथ श्रोताओं आपने अनुरोध फिल्म का गीत सुना। किशोर कुमार की उतनी ही मीठी आवाज थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। राजेश खन्ना साहब पर गीत फिल्माया गया था। आप सुन रहे हैं ई फरमाइश। और लीजिए श्रोताओं, ई फरमाइश में अगली फरमाइश की बारी है और श्रोता हमारे जुड़ेंगे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन तमाम श्रोताओं के साथ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से ईमेल पहुंची है सोहन जोशी और पायल जोशी की। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे श्रोता जो भेज रहे हैं अपनी ई फरमाइश। और श्रोता रहेंगे उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, ये तमाम श्रोता रहेंगे पाकुड़ झारखंड से और बहुड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। इन तमाम श्रोताओं के साथ हम शामिल कर लेते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर के श्रोताओं को, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी को। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम से जो लिख भेज रहे हैं अपनी फरमाइश। जिला जींद हरियाणा से मनदीप, केशव, दक्ष और प्रीति कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ेंगे चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा,

और अगली ईमेल शामिल करते हैं मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह को, और इन्हीं के साथ संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत मकड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक रैया जलंधर पंजाब से, यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, ये तमाम श्रोता रहेंगे कासम कॉलोनी सनावत से। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता रहेंगे गांव शेरडा, तहसील भद्रा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, सुशील वर्मा और इनके मित्र गांव चौधरीवास, जिला हिसार से राजू अग्रवाल जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में लीजिए अगली ईमेल हम शामिल करते हैं हमारे इन श्रोताओं की। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय धींगिया, नमन धींगिया और अपार धींगिया, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। इन श्रोताओं के साथ छत्रपति संभाजी नगर से ईमेल आई है, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे श्रोता रहेंगे। दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इन श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं, प्रेम पूर्वक निवेदन भेज रहे हैं और लीजिए प्रेम पूर्वक उस निवेदन को हम स्वीकार भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचेत कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्व देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में अगली ईमेल हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अवंतिका येले, और लीजिए गांव में डाकघर निमनाबाद जिला जींद से हमारे श्रोता जुड़ते हैं, जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। गांव गैबीपुर से हमारे श्रोता रहेंगे सतपाल सिंह, राजपूत, शुभम और जीवांशु। इन तमाम श्रोताओं के साथ अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं का जो लिख भेज रहे हैं हमें। MLP रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और SK पप्पी खुराना। इन्हीं श्रोताओं के साथ श्रोता रहेंगे रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, इलिजा नायाब और लड्डू, और गांव जेवरा जिला हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण, ये तमाम श्रोता रहेंगे। इन श्रोताओं के साथ साथ अगली मेल हम शामिल करेंगे हमारे इन श्रोताओं की जो लिख भेजते हैं हमें अपने जज्बात, अपने नाम, परिवार के सदस्यों के साथ। और श्रोता जुड़ेंगे जसपुर पूर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन प्रवीण और माहिरा नूर। इन तमाम श्रोताओं के साथ रहेंगे सावतपुर से ऋषि सेन और कंचन सेन। श्रोताओं अगला गीत जो हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं 1975 में आई फिल्म धर्म कर्म का ये गीत रहेगा, और अब हम चलते हैं अपनी कल्पना की उड़ान से एक ऑडिटोरियम में जहां मंच पर पर्दा हटता है और श्रोता तालियां बजाकर एक लेजेंड का स्वागत करते हैं और मंच पर प्रकट होते हैं राज कपूर साहब। और श्रोताओं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है जो इस गीत में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपनी अनुभव की कलम से लिखा, और अनुभव के आधार पर आरडी बर्मन साहब ने इस गीत का संगीत तैयार किया। और भाई आवाज तो सुनहरी रहेगी, जी हां मुकेश जी की आवाज। और श्रोताओं जीवन का फलसफा बयां करता ये गीत। कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं, सही मायने में श्रोताओं कर्म अपनी मोहब्बत और कुछ यादों की खुशबू छोड़कर जब चले जाते हैं तो ये गीत याद आता है और जिंदगी के आईने को भली भांति दिखाने का एहसास करवाता ये गीत। नाम, शोहरत और रिश्तों की
असली कीमत क्या होती है, आइए सुनते हैं इस गीत में।

जिंदगी के गहरे एहसासों से भरा हुआ श्रोताओं गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था और आरडी बर्मन साहब का संगीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम में के इस गीत में। और श्रोताओं अब बारी है अगले गीत की। अगला गीत 1971 में आई फिल्म से लिया गया है श्रोताओं, और गीत की सुनने की ख्वाहिश रखते हैं हमारे ये तमाम श्रोता। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इन तमाम श्रोताओं के साथ वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इन तमाम श्रोताओं के साथ रोहतक से जुड़ेंगे शीला, अनीता, दीपक, ललित, कृष और अनवी। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे श्रोता जो लिख भेज रहे हैं हमें radiohisar@gmail.com पर अपनी फरमाइश। और लीजिए खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी श्री नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू सिक्का। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार। इन तमाम श्रोताओं के साथ अब शामिल कर लेते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून की फरमाइश को। ये तमाम श्रोता रहेंगे जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता रहेंगे रेखा रघुवंशी, पूजा, बबीता, शोभा, नंदिनी, रघुवंश, ललित नारायण, भाऊ खड़से, आराध्या खड़से और तमाम मित्र। इन तमाम श्रोताओं के साथ रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जुड़ते हैं कार्यक्रम से। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे जो लिख रहे हैं, अगली ईमेल हम तक पहुंचा रहे हैं। गांव ही परसोगा, तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो शेख, करिश्मा शेख और बाबा शेख। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश रजत और बेबी गरिमा बगड़िया कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अगली मेल हम तक पहुंची है। हमारे श्रोता रहेंगे फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से रहेंगे भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, अरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार के छोटे बड़े सदस्य। श्रोताओं गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहन सैफी, लीबा मलिक, के तमाम श्रोता रहेंगे छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। इन तमाम श्रोताओं के साथ बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनई बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ के श्रोता रहेंगे। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता रहेंगे गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। और लीजिए अगली फरमाइश हम तक आ पहुंची है। हमारे श्रोता रहेंगे बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा, ये तमाम श्रोता रहेंगे ग्राम पंचायत बठे।

ना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया और तमाम परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे आशु मोची, कस्बा गुनोर से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनोरी। तो सुनते हैं तमाम श्रोताओं के साथ 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत, आनंद बख्शी साहब की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा।

सुप्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री तनुजा जी पर यह गीत फिल्माया गया था। श्रोताओं, 1971 में यह फिल्म आई हाथी मेरे साथी। किशोर कुमार की अद्भुत आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उतना ही मीठा संगीत। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है दोस्ती, जो हंसी बांट दे और गम आधे कर दे वही तो सच्चा दोस्त कहलाता है। श्रोताओं, गमों को आधा करने की जहां तक बात है, भाई हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन के तमाम गमों को हम दूर कर दें। और देखिए, दूर कर भी रहे हैं, उन श्रोताओं के तो गम दूर हो ही रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं आकाशवाणी हिसार के आज के इस अंक में। और इस क्रम में लीजिए, शामिल हो रहे हैं दिल्ली से रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से हमारे श्रोता रेशमा अंसारी, निशा जालंधर से देवशंकर जलोटिया, और इन तमाम श्रोताओं के साथ शामिल हो रहे हैं ग्राम आनगांव जिला जालना से परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रवाद शिंदे और सभी शिंदे परिवार के सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब रुख करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशूल खान और अनुराज बेनारा कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, राजेंद्र कुमार हमारे श्रोता शामिल होंगे। ये तमाम श्रोता रहेंगे मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के तमाम सदस्य गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से। इन्हीं श्रोताओं के साथ दुर्गा कॉलोनी जिला हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टूटीजा, खुशदिल और मिला टूटीजा, गुड्डू जीनू, मनु शिव सेठी और करणपुरी स्माइल टूटेजा, ये तमाम श्रोता रहेंगे। और इन्हीं श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर के श्रोताओं को। जी हाँ, इनकी फरमाइश हम पहले शामिल कर चुके हैं और आपसे निवेदन भी कर चुके हैं श्रोताओं कि आप एक फरमाइश के बाद धैर्य रखें और अन्य श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दें। श्राफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डोली और सुरेश डोकर, गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर फरहत शेख, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, इन तमाम श्रोताओं के साथ अगली मेल हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की जो लिखते हैं। कापस हिडा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और जलंधर से संदीप।

और सुरेश जाटव। और लीजिए, गांव लोगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से ईमेल हम तक पहुंची है। स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे इनके गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। तो इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का लीजिए अगला गीत सुनते हैं। और श्रोताओं, गीत रहेगा 1974 में आई फिल्म दोस्त का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा और गीत फिल्माया गया अभिनेता धर्मेंद्र साहब और अभि भट्टाचार्य जी पर। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है और शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। तो सुनते हैं एक और जीवन के फलसफे को बयां करता कार्यक्रम ई फरमाइश की ये फरमाइश।

गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, उम्मीदों से भरा, जिंदगी की सच्चाई से भरा हुआ एक गीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी हिसार से। और अब श्रोताओं, समय अंतराल का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

90. अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत आकाशवाणी हिसार पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ई फरमाइश, और आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और श्रोताओं, गीतों का ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं और हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत श्रोताओं रहेगा कार्यक्रम का अंतिम गीत, और श्रोताओं साथ ही ये रहेगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते हैं तो मन को ले जाते हैं खुली वादियों की ओर, जहां हवाएं भी गुनगुनाती हैं और दिल स्वतः ही मुस्कुराने लगता है। तो ऐसा ही एक प्यारा सा गीत आइए अब सुनते हैं। मीठी सी शरारत है, खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में समेटे हुए है ये गीत। हवाओं में घुल जाए जब किसी की बात, हवाओं में घुल जाए जब किसी की बात, दिल भी चल पड़े फिर उसी के साथ। कुछ गीत यूं ही नहीं बन जाते यादगार, उनमें छुपे होते हैं मोहब्बत के जज्बात, और इन तमाम जज्बातों को समेटे हैं ये तमाम श्रोता अपनी फरमाइशों में। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर। इन तमाम श्रोताओं के साथ नई बस्ती गंज डुंडवारा यूपी से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, ये तमाम श्रोता रहेंगे। और इन्हीं श्रोताओं के साथ लीजिए कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल पहुंचे हैं फरमाइश के जरिए आकाशवाणी हिसार के स्टूडियो में। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे खरक पूनिया से मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, बबलू, शगुन शेठी, काली, वीनी, घोलू और इनकी दादी जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ अब शामिल कर लेते हैं गांव चौधरीवास जिला हिसार से मांगेराम सतोड़, श्रीतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार को। और इन श्रोताओं के साथ अब अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा को। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल करते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार को। मेरठ कैंट से ये मेल हम तक पहुंची है दिग्दर्शन और कविता गोड़ हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार कार्यक्रम में शायद पहले भी शामिल हो चुके हैं, बहरहाल एक बार पुनः शामिल हुए हैं हमारे ये श्रोता। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से श्री राम कुमार रेवाड, चंद्रकला रेवाड और तमाम परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और योधव कड़वासरा सहित इनके मित्र रहेंगे हनुमान सहारन जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। इन श्रोताओं के साथ लीजिए मंगल जनागल, राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, चक 5 एमडी पत्रोड़ा से हमारे श्रोता जुड़ते हैं आकाशवाणी हिसार से। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और मुक्ति अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, ये तमाम श्रोता रहेंगे। और इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं

उमरखेड़ से फरहान खान, अर्शिया खान और सरोज खान, जलंधर से संदीप जाटव और आशु सुरेश जाटव, ये तमाम श्रोता रहेंगे। और कार्यक्रम के अंतिम फरमाइशी गीत के साथ गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। तो लीजिए कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश सुनते हैं। सीता और गीता फिल्म से 1972 में आई, हेमा मालिनी और अभिनेता संजीव कुमार साहब पर यह गीत फिल्माया गया। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों को आप सुनेंगे। आर डी बर्मन साहब का संगीत रहेगा, आनंद बख्शी साहब की रचना रहेगी।

और लीजिए श्रोताओं, अब हम भी चलते हैं भाई कार्यक्रम समेटने की ओर बढ़ चले हैं। घड़ी हमें कह रही है कि अब आप भी लें अपने तमाम आज के संगीत प्रेमियों से अलविदा। तो श्रोताओं, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी हिसार। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। और अब समय कार्यक्रम रूपरेखा का, तो जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, 6:10 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। और प्रभु वंदना पर कार्यक्रम सुनिएगा भक्ति संगीत शाम 6:20 पर। और युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, समय रहेगा शाम 6:30। शाम 7:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे मृदा स्वास्थ्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों का असंतुलन, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप बातचीत सुनिएगा। कार्यक्रम रहेगा किसानवाणी और समय रोजाना की तरह शाम 7:00। 7:30 पर सुनिएगा चौपाल की संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य, ये कार्यक्रम रहेगा महारेगांव के अंतर्गत, समय रहेगा 7:30। और लोकमंच आप सुन पाएंगे रात्रि 8:00। खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा श्रोताओं एक फिल्म से, समय रहेगा रात्रि 8:30। और राष्ट्रीय हिंदी समाचार और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, समय रहेगा रात्रि 8:45 हिंदी समाचारों के लिए और रात्रि 9:00 अंग्रेजी समाचारों के लिए आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों को। से रात्रि 10:00 तक सुनेगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। संदेश आपके, गीत हमारे, व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम रहेगा आकाशवाणी के हिसार केंद्र से, समय रहेगा रात्रि 10:00 से 11:00 तक। और प्रस्तुति रहेगी शिवानंद वाशिष्ठ की। राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। तदुपरांत सुनेगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:05 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से, कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की, नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मिरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया, परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। और हरियाणा निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों को आम चुनाव एवं उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की, मतगणना कल 8 बजे शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। श्री प्रधान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। अनुसंधान परिषद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
1: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को भारत के हजार वर्षों के इतिहास, संघर्षों और सांस्कृतिक चेतना से प्रेरणा लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर आज मिरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। कॉलेज का प्रबंध अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति संभालेगी। फैसला आते ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि उन्हें कानून पर विश्वास था।
2: हरियाणा के सिखों वास्ते अज बहुत वड्डा फैसला आया है। मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज शाहबादी दा 1991 इसकी नींह रखी गई, 2004 मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होया। अज तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बिल्डिंगा तैयार कीतियां ने वह अपने खर्चे ते या लोन लेके कीतियां ने। साडा केस मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज का हाईकोर्ट चलता सी पिया, परसों बहस होने तो बाद अज उन्हां दी जिहड़ी श्रोमणी कमेटी दी सी अपील वो डिसमिस की गई है। हुण मिरीपीरी मेडिकल कॉलेज की जिहड़ी मालिक है वह हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन चुकी है।
0: उन्होंने कहा, अस्पताल पर 100 करोड़ रुपए का ऋण है जिसका भुगतान अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सिंग अधिकारियों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज शाम 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणामों से संबंधित आंकड़े साझा किए।
3: 2,42,856 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अपियर हुए थे, जिसमें से 2,05,618 परीक्षार्थी पास हुए हैं और कुल पास प्रतिशत जो है वो 84.67% रहा। छात्र और छात्राओं के विषय में बात करूं तो कुल 1,22,963 छात्र अपियर हुए थे, जिसमें से 1,01

0: 151 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। 119,893 छात्राएं क्लियर हुई थी और 105,467 छात्राएं पास हुई हैं। छात्राओं का जो परीक्षा परिणाम है वह 87.97% रहा है। छात्राएं ही उनका परीक्षा परिणाम 6.52% छात्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा है।
1: उन्होंने

0: रूरल में जो पास प्रतिशत है वह 171,270 परीक्षार्थी जो थे उनमें से 1,47,553 विद्यार्थी परीक्षार्थी जो पास हुए हैं और रूरल का पास प्रतिशत 84.98% रहा। इसी प्रकार से अर्बन की बात यदि हम करें, अर्बन में कुल 77,586 परीक्षार्थी अपियर हुए थे जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं और अर्बन का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है, 9.1% रहा है, यानी जो रूरल का परीक्षा परिणाम है वह अर्बन परीक्षा परिणाम से बेहतर है।
1: उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के आम एवं उपचुनावों की मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। प्रत्येक चरण की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। पंचकुला नगर निगम में मतगणना को लेकर उपमंडल दंडाधिकारी संयम गर्ग ने बताया,
2: पंचकुला नगर निगम इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर और वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग साइमल्टेनियसली चलेगी। इसके लिए 20 टेबल का प्रबंध किया गया है जिसमें से 10 टेबल मेयर की काउंटिंग के लिए और 10 टेबल वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
1: उन्होंने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार पर बल दे रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 3 मई को ली गई नीट परीक्षा रद्द की। नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को लेकर मीरीपीरी न्यास द्वारा दायर याचिका रद्द की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 84.67% रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रभु आराधना पर आधारित भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत, ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं अब युवा उमंग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विनेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं,
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी

0: अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
0: आग बरसाती धूप।
2: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
3: क्यों?
2: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
3: अच्छा,
2: तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
2: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
2: धीरे से, वहाँ चाहिए।
3: हाँ, धीरे से, धीरे से।
2: चलो ना।

0: वाह कितने ढेर सारे आम हैं, अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या एक तुम भी खाओ,
1: एक मैं खाता हूँ। आहा इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है, देखो ना कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे। अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। मोहन मोहन
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है। लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं।
3: विद्या विद्या
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे क्या बात है।
1: देखो ना हामिद काका मोहन को क्या हो गया।
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए पापा।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लेटाते हैं।
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब।
4: कौन है भाई अभी आया।
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए।
5: क्या बात है हामिद भाई क्या बात है।
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
5: ओहो अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ,
5: हाँ। और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
5: और विद्या बेटी इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।

0: लाओ। अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
0: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
1: जी।
0: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
2: जी?
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर। ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
4: साथियों नमस्कार।
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
4: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में
5: अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
5: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
5: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
3: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
5: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल।

0: भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर कूद पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया।

0: एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
1: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
0: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं,
1: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग।

FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत। ये आकाशवाणी हिसार है FM 102.3 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: नरेंद्र भाई राम राम।
1: सुनीता बाण आपने भी राम राम और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भी राम राम। सुनीता बाण, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
0: जी।
1: लेकिन सुनीता बाण आज आप देखने लग रहे हैं अपनी जो भूमि है ना
0: जी,
1: उसकी सेहत जमा खराब होने लग रही है। आपने अंधाधुंध जो खादा का प्रयोग कराया है उससे अपनी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो काफी हद तक असंतुलन हो गई है। लेकिन आपने मृदा स्वास्थ्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बनाने खातर बहुत से काम करने की जरूरत है, ताकि जो अपनी माँ है, धरती है जिसने आप कमा हाँ, जो आपने सारा अन्न पैदा करके देवे है उसने आपने बचाना है। और उस खातर देखो कागरण है खेत में है ना, सिर्फ असली ताकत ट्रैक्टर मशीन या बीजा तक हो नहीं, असली ताकत तो है हमारी धरती माँ।
0: बिल्कुल।
1: और जब धरती माँ स्वस्थ होगी तो फसल भी बढ़िया होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। तो भाई ये मृदा जो स्वास्थ्य है इसने बचाने खातर आपने किस तरह के तरीके अपनाने की जरूरत है सुनीता बाण, इस पर आपने काम करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल नरेंद्र भाई, देखो जैसे धरती अपनी माँ और अन्नदाता दोनों है, और अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल भी बढ़िया होगी, अगर फसल बढ़िया होगी तो किसान खुशहाल होगा, अगर किसान खुशहाल होगा तो अपना गांव देश तरक्की करेगा।
1: बिल्कुल सुनीता बाण, जिस तरह ना अपने शरीर की जो ताकत हो ना, अगर आदमी की सेहत सही नहीं हो तो आदमी क्या करेगा। तो उसी तरीके से अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति अगर बढ़िया होगी, उसमें सेहत उसकी जमीन की जो सेहत है वो बढ़िया होगी तो तभी आप आगे कुछ कर सका है। तो मृदा स्वास्थ्य का मतलब है मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व, जैविक पदार्थ, पानी रोकने की क्षमता, हवा का आगमन और सब सही मात्रा में हो गए ना, तो तभी आप देख सका है कि अपनी जो जमीन है उसमें बीज सही टाइम पर अंकुरित होगा, उसकी जड़ मजबूत बनेगी, पौधा रोग कम पकड़ेगा और उत्पादन आप ज्यादा मिलेगा।
0: और नरेंद्र भाई बता दें कि कई भाई नु कह देना कि अपने अगर आपने सही फसल चाहिए ना और बढ़िया फसल जिसमें कह दें हाँ, तो उसमें आपने कई तत्व हैं जिनकी जरूरत पड़े है, जो कि पोषक तत्व हैं जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है।
1: बिल्कुल।
0: और उसे में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें इनमें भी दो तरह के हुए हैं, उसमें दूसरा जो है उसमें जिंक, आयरन, सल्फर और बोरोन, यानी कि जिस तरह अपन रोटी दाल टेम पर दाल भी चाहिएगी, रोटी भी चाहिएगी, पानी भी चाहिएगा और थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए तो खुराक भी चाहिए, तो उसी तरह आपने जो जमीन है उसने भी अपन उसका जो दोहने करण लग रहे हैं क्योंकि खाद पर खाद डालने लग रहे हैं। अब मैंने न्यू देख लिया नरेंद्र भाई ने आपकी फसल में यह डाल रखी तो मेरा न्यू हो जाए वो कदे इसके गढ़ा ना हो जाए, तो वही चीज़ देख के मैंने सोचूँ भी मैं भी वह गेर दूँ, तो वो अंधाधुंध जो अपन दवाइयाँ का प्रयोग करने लग रहे हैं उसकी वजह से जो अपनी फसल है वह भी प्रभावित हो है, साथ ही साथ जमीन उससे पहले प्रभावित हो।
1: बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि भाई अपने जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो, जैसे आपने कहा कि जिंक है, आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलीबेडेनियम है, कहने का मतलब ये है ना, चाहे अपन सही है थोड़ी मात्रा में लेकिन अपनी भूमि ने में इनका बड़ा महत्व है।
0: बिल्कुल।
1: कई बार हमें भाई कह देंगे भाई क्या जरूरत है भाई जिंक डालने की, लेकिन अगर आप जिंक नहीं डालेंगे ना तो सुनीता बाण आप देखेंगे अपने है ना जो फसल है उसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे, पौधा छोटा रह जाएगा, उसकी बढ़ुआ रुक जाएगी। इसे डाल से अपना धान है, गेहूं है, मक्का है, उसमें भी आप इन्हें जिंक सल्फेट की जो समस्या है ना कई बार बहुत देखने में मिले है, और डॉक्टर साहब आप इन्हें समय समय चेतावनी भी है कि भाई आपने 21% है ना जिंक सल्फेट भी खेत में डालना जरूरी हो है, और लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैसे कहा। उसी तरीके से मिट्टी जांच भी आप इन्हें जरूरी है समय समय पर कराना
0: जी,
1: क्योंकि आप बेरा है कई आपने शुरुआत में कहा दो तरह के पोषक तत्व हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो दोनों तरह के तभी पता चल लगा आपने खेत में जब आप मिट्टी की बढ़िया तरीके से जांच करा लेंगे, चाहे पानी की बात हो चाहे मिट्टी की हो।
0: नरेंद्र भाई, या तो जब भी आप फसल चक्र जब चलावा हाँ, जैसे एक फसल कटगी तो दूसरी जब आओगी उस समय पर आप बार बार सारे बण भाइयों तो हर बार गुजारिश करा हाँ कि जब भी आप ज्यादा ना करो लेकिन साल में एक बार या दो साल में एक बार अपनी मिट्टी और पानी दोनों की जांच कराओ, ताकि आपकी फसल में जो कमी हो रही है या आपकी धरती में किस पोषक तत्व की कमी है उसका आपने पता चल जाए और आप उसने समय पर डाल के अपनी धरती ने स्वस्थ रख सकें।
1: बिल्कुल देखो, जैसे मान ले कोई पोषक तत्व में जैसे आयरन और बोरान है, कई भाइयों तो बेरा भी को नहीं हुआ के, लेकिन जब आप है ना कृषि वैज्ञानिका के पास लेके जाओगे तो वो आपने बताओगे कि आपके खेत में है ना जिस तरह आयरन की कमी हो जाए, अपने खून की कमी नहीं हो जाकर,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसी तरीके से है ना अपनी जमीन में भी इन तत्वों की बहुत कमी हो जाए और इन तत्वों की पहचान है ना अपने कृषि वैज्ञानिक कर सके हैं। तो इसमें नई जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाए हैं, नसें हरी दिखाई देवे हैं, लेकिन सारी जो भूमि हो है ना उसमें या ज्यादा देखने मिले है, जैसे बोरान की कमी बताई, फूल झड़ने लग जाएंगे, फल सही नहीं बनेंगे, दाने कमजोर हो जाएंगे। इसी तरीके से सरसों है, सब्जियां हैं, फलदार पौधा में ज्यादा या चीज देखने मिले है।
0: जी तो देखो नरेंद्र भाई, आपने जागरूक तो होना पड़ेगा, न्यू नहीं है कि भाई न्यू सोचे ये इनका की काम है, ये तो अपना बोल कर चले जाए। भाइयों देखो, हम आपके ही भलाई खातर यह चीज बार बार आप तक गुजारिश कर दे रहा हूँ कि जब तक आप मिट्टी पानी की जांच नहीं करवाओगे तब तक आपकी मिट्टी में आ रही किसी भी तरह की कमी का आपने पता नहीं चलेगा, और जब तक आपने पता नहीं चलेगा तब तक आपकी जो फसल है वह प्रभावित होती रहेगी। तो सब तरफ एक बार फिर यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप साल में एक बार नहीं तो दो साल में, तीन साल में एक बार मिट्टी और पानी की जांच आप जरूर करवा लें, ताकि आप अपने जो भूमि है उसने स्वस्थ रख सके।
1: बिल्कुल सुनीता बान, देखो बात आपने बढ़िया करी है, बे आदमी जांच कराओगे जदे बेरा पटेगा, लेकिन अपनी जो मिट्टी है वो खराब हो क्यों रही है इसका भी कारण है, उसकी तय तक भी अपने जाना पड़ेगा और उसकी तय अपने कृषि वैज्ञानिक बतावे हैं। तो भाई इनकी कमी आवे क्यों है, एक तो फसल बार बार आप जो फसल ले वहाँ उसका कारण, दूसरा जैविक खाद का कम इस्तेमाल आप करा हाँ, रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा होने लग रहा है, और मिट्टी जांच ना करवाना। आपने कहा ना असली बात तो जदे बेरा पटेगा, जब आप मान लिया बीमार हाँ डॉक्टर के पास जावा को नुए गोली ले ली, तो उसी तरीके से आप इन्हें अगर मिट्टी पानी की जांच करा लेंगे तो आप इन्हें उसकी भूमि में जो जो पोषक तत्वों की कमी है, जो अपना संतुलन जो बिगड़ रहा है, वो सही तरीके से बेरा पट जाएगा।
0: भाई देखो, मिट्टी का तो पोषक तत्व वहाँ बेरा पट जाएगा, लेकिन जो किसान भाई हैं उनका भी थोड़ा सा
1: ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: और वो ध्यान जो दे रखा करें जाओगा भाई, क्योंकि जब आप मनोरंजन कराओगे
0: बिल्कुल
1: तो सुनेंगे पहले यार आग नहीं।

பணியா புத்தக்கி மா.

ओ माने ना।

ಬಾಗಿಯಲ್ಲಿ ದಾ ಕತಿ ಬಾಟೆ ಕಲೆಯೋ ದಕ್ಷಪೂ

0: सुनीता बाण, आपने देखो दोनों तरीके थे भाइयों का ध्यान रख लिया। पहले आपने मिट्टी की बात बता दी और फिर आपने मनोरंजन भी करा दिया, और मनोरंजन का जब तड़का लाग जे है तो आदमी फिर थोड़ा सा और उसमें जिज्ञासा पैदा हो है कि अगली और के बात बताऊंगे। तो हम आपने बताऊंगे कि मिट्टी की जांच है ना किस तरह करावें, क्यों करावें। एक तो भाई हम कहेंगे कि आपने पहले दो तीन बार भी कही आपने भाई हर दो तीन साल में मिट्टी की जाँच जरूर करा लें। गोबर की खाद डालना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देसी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या हरी खाद है, या किसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और प्राचीन टाइम में अपने जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी इस चीज़ ने करते आया करते।
1: पहले भाई देखो रासायनिक खाद तो थी को नहीं, जो अपना गोबर की खाद थी उसे इतने
0: या हरी खाद थी बिल्कुल,
1: और उसते जो फसल लिया कर दे वो बढ़िया होया कर दी, ताकत भी होया कर दी। लेकिन आजकल जो पोषक तत्वों का असंतुलन है उसके कारण जो अपनी ज़मीन में दिक्कत आ रही है, मिट्टी खराब होने लग रही, कारण के है। एक तो है जरूरत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बार बार यूरिया डालन से मिट्टी कमजोर हो जाए। दूसरा एक बार एक ही फसल ने बार बार बोना, क्योंकि आप फसल चक्कर तो अपना दे कोने,
0: ठीक बात है।
1: और गेहूं दान चक्कर में आप कह तो गेहूं बोवांगे कह दान लगाओगे, बीच में दूसरी तो जिसमें गेहूं लगा दी उसमें हम दूसरी कोई फसल लगा दे नहीं, सोचा ले धान लगा दिए, इब धान काट लिए तो चलो इसे मैं गेहूं बो दी।
0: तो कहने का मतलब है उस समय है ना सुनीता बाणा, आप यह कहना चाहूँ कि आप फसल चक्र अपना के अगर दलहन है, तिलहन है या चाराली फसल उसमें साथ लगाते रहेंगे और बदल आओ करते रहोगे तो आप अपनी भूमि की सेहत सही कर पाओगे। और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग भी जरूरी करना पड़ा है, क्योंकि हमने अगर हमने कोई जाँच नहीं कराई ना, हमें पता ही नहीं भाई कितनी खाद गिर दी। कई भाई तो वही आपने आड़ी बात है, मैं नरेंद्र दो कट्टे ले रहा था, सुनीता तीन गेड़ लाग रही है। सुनीता इतने कै कट्टे गेड़ दिए, बोले हमने तो तीन गेड़ दिए, अगले दिन मैं ठाके कट्टा जान लाग रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हो भाई हमने उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो अपने कृषि वैज्ञानिक अपने को समय समय पर बतावे हैं। और जब आप कोई भी चीज़ की जाँच करा ले हैं तो आपने पूरा ज्ञान हो जाए कि कितना खाद डालना है, कितना पानी देना है, किस समय पर देना है और खाद कितने कितनी बार डालनी है।
1: बिल्कुल नरेंद्र भाई, जिस तरह आपने खाद की बात करी तो पहले जैविक खाद का प्रयोग कराया करते, अब जैविक खाद का तो प्रयोग ही ना, तो अपन गोबर की खाद प्रयोग कर दे ना कंपोस्ट कर दे। आजकल के अपन ने सोचा ले भाई आन दे रासायनिक खाद ले एक कट्टे पर दो कट्टे और सही, तो उस चीज का प्रयोग जो है जो जैविक खाद का कम प्रयोग आप करा हाँ उसका कारण भी अपनी मिट्टी जो है वो प्रभावित होने लग रही है। तीसरी बात आ गई पानी का, जो आप इको थे कि पानी का गलत इस्तेमाल, यानी जिस तरह आपने या तो पानी कम दे दिया या पानी ज्यादा दे दिया, तो इन दोनों से अपनी मिट्टी जो हुआ खराब हो है। आगे के कि मिट्टी की वही बार बार फिर आपने कह दो एक ही बात अपन जो कह ला रहे हैं वो है कि मिट्टी की जांच जरूरी है। देखो अगर मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे तो बिना मिट्टी के अपन न्यू की गिर पटेगा कि आपने खाद इतनी डाल दी तो संतुलन कितना बिगड़ गया, यानी बिना जांच करवाए अगर अपने कोई भी तत्व एक डाल दिया उसकी अधिकता होगी तो देखो भाई उस अधिकता की वजह तभी हमारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी।
0: कहने का मतलब है भाई बिना जांच के तो खर्चा भी बढ़ेगा और फायदा भी कम लगा। तो हम तो किसान भाइयों ने कहा कि एक तो है हर दो तीन साल में गोबर की खाद डालना ना भूल, कम से कम 4 से 5 टन प्रति एकड़ किसान भाई जरूर डाल लें। और कृषि वैज्ञानिकों तो सलाह भी ले सके हैं तो भाई जमीन स्वस्थ होगी तो किसान भी समर्थ होगा और मिट्टी की जांच अपनाओगे तो खेती का खर्चा भी अपना आप घटाओगे। कहने का तात्पर्य है कि हमने इन सारे कामों पर काम करने की जरूरत है और ये चीजें किसान भाई जदे कर सके हैं, जब किसान भाई की सोच बढ़िया तरीके से बदलेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बदलेगी और वैज्ञानिक जो अपने भाई हैं कृषि वैज्ञानिक उनके पास जाके या आपके पास जो भी अपने जो प्रगतिशील किसान हो कहीं तो देखो वो भी बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। आप उनसे भी एक अच्छी तरीके से कोई भी योजना बना के अपने खेत के बारे में काम कर सके हैं और अनुवाण जोकर अपना शरीर का आधा डॉक्टर आदमी खुदे हुए हैं
1: बिल्कुल,
0: तो उसी तरीके से आपने अपने खेत का हिसाब किताब भी हुआ है। लेकिन कई बार अपना बीमारी समझ में नहीं आवा और अभी डॉक्टर के पास नहीं जावांगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम तो ये कहेंगे कि आप कृषि वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा जरूर लेते रहें, समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों को अपने खेत पर बुलावें और उसकी पूरी जाँच करवाएं।
1: बिल्कुल नरेंद्र भाई, देखो अगर आपने अपनी जो भूमि है उसने सुधारना है तो उस खातर भी अपन ने ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर अपन नहीं ध्यान देवांगे ना डॉक्टर ने बुलाओगे अपने आपका रोज बुखार चढ़न लग रहा, आप डॉक्टर के नहीं जाओगे तो आपने क्यों करवा पड़ेगा कि आपका बुखार चढ़न क्यों लग रहा है
0: और कौन सा बुखार से
1: कौन सा बुखार है। तो वही हालत है कि अगर आपने न्यू बेरा की एक बार तो न्यू देखगी ओहो फसल खराब होगी, अगली बार न्यू सोचा ले के जरूरी है अपना आप ही डॉक्टर बन जाए और उसमें और खाद और दवाई और डालने लग जा। तो ऐसा ना करें, अगर आप हकीकत में ये चाहें कि आपने अच्छी फसल मिले आप मुनाफा ज्यादा कमाएं तो आप सबसे पहले तो अपनी जो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, उसके बाद जैविक खाद का जितना हो सके प्रयोग करें, चाहे वह गोबर की खाद है चाहे कंपोस्ट है चाहे वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि ये वो खाद है जो कि जमीन की ताकत ने बढ़ावे हैं।
0: लेकिन भाई मैं एक और बात कहूंगा कि अपने कृषि वैज्ञानिक समय समय पर किसान भाइयों ने कहेंगे कि पांच बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक तो बिना जांच खाद मत डालो, गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करो, कई भाई तो बिल्कुल दिखांदे को नहीं। तीसरा भाई फसल चक्र अपनाना जरूरी है। चौथा खेत में फसल अवशेष कदे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि अगर आप फसल अवशेष खेत में जलाएंगे तो उसके साथ एक तो मित्र जो कीट है वो जलेंगे, साथ साथ में आपके जो पोषक तत्व हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज जलेगी तो वह नुकसान नहीं करेगी। और मिट्टी को जिंदा रखना है तो भाई आप इन्हें खेती को जिंदा जदे रहोगी जब अपनी मिट्टी जिंदा होगी, कहने का मतलब मिट्टी में ताकत होगी तो खेत में ताकत होगी और खेत में ताकत होगी किसान के घर में अच्छा आएगा।
1: नरेंद्र भाई देखो जिस तरह बार बार ये कहा कि जब भी कोई फसल करा तो फसल अवशेष ना जला के आप उसकी खाद भी बना सको, लेकिन किसान भाइयों की शिकायत हो कि इतने अवशेष बच जाए कि हम उसका करें के। देखो आप जलाना कोई आपका किसी भी तरह का निदान नहीं है, अगर आपने जलाने भी है तो भी आपने खेत तय काट के बाहर किसी खड्डा खोद के उसमें जला दो, ताकि ना तो आपके जो मित्र कीट हैं और जो पोषक तत्व हैं वो प्रभावित हो। दूसरा कई बार के है कि मन्ने फसल काट ली नरेंद्र भाई की बेखड़ी है, मन्ने फसल काट के ना मन ठूंठ दिखे खड़े मन उनमें आग लगा दी, तो वो आग एकली मेरी मेरे खेत में नहीं, वो नरेंद्र भाई के खेत में भी नुकसान कर सके।
0: बिल्कुल भाई,
1: तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस बार आपने कितनी बार देखा है कि खड़ी फसल में 100-100 एकड़ जो है लोगों की फसल खराब होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी फसल अवशेष जलाने लग रहे हैं तो सावधानी तय और कोशिश यह करें कि अगर आपने मजबूरी है आपकी आपने जलाने हैं तो बजाय पूरे खेत में आग लगाने की आप कहीं पर गड्ढा खोद ले उसमें सारे अवशेष डाल के और वो जला दे। अगर आपने गड्ढा खोद लिया तो उसमें फिर वर्मी कंपोस्ट बन दी नरेंद्र भाई देर को लग गए।
0: बिल्कुल, तो भाई हम तो ये कहेंगे कि जमीन सिर्फ मिट्टी ना है, किसान की असली पूंजी है, जितनी देखभाल धरती की करोगे उतना ही फायदा खेती में मिलेगा। और भाई ये बातचीत तो लेकिन जारी रखनी थी लेकिन घड़ी सारा करने लग रही है। अपना भाई नरेंद्र कौशिक ने
1: और अपनी बाण सुनीता ने दी इजाजत, सारे
0: बाण भैया ने राम राम।
1: नरेंद्र भाई आप बात आप खाद की करने लग रहे थे तो उसमें किए कि खाद भी डाल दिया अपन ने, पूछ लिया डॉक्टर पे सारी चीजें, पानी का भी अपन बचा लिया क्योंकि अगर अपना ज्यादा पानी डालेंगे तो भी नुकसान और कम डालेंगे, तो इसमें एक काम कर सका कि अपना पानी भी जिसमें पानी की भी बचत हो जाए तो आप टपका सिंचाई है उसने यूज कर सका है वह इस्तेमाल करेंगे तो पानी भी बचेगा और हर एक पौधे ने जो पानी सही तरीके से मिल जाएगा और साथ के साथ अपना ढेंचा जैसी अरी जो फसल खाद है उस खाद का भी प्रयोग अपना कर सका ताकि अपनी मिट्टी ना ज्यादा से ज्यादा। तो यह योजना जिसमें कौन सी खाद डालनी है या कितनी मात्रा में डालनी है कितने इस पे कितना खर्च होगा, देखो खर्च तो कम से कम होगा और दूसरा पैदावार भी बढ़ेगी, तो अपना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो भी बनवा लें भाई। हम तो यही सलाह देंगे भैया ने कि हर एक किसान भाई अपना जो जमीन का वो नहीं कदे नु सोचो भी फर्द बनवाने की कौन कहंदे आमी, इसमें जो सरकार की योजना चलाई गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप उसने जरूर बनवावे समय समय पर ताकि आपने पता चलता रहेगा कि आपने कौन सी फसल कितनी डाली है, कितनी खाद डाली है और कितनी मात्रा में आपने खाद डालनी थी, इसका भी पता चलता रहे साथ के साथ।
0: सुनीता बाण आपने है ना स्वास्थ्य मृदा कार्ड की बात बहुत बढ़िया करी है, और स्वास्थ्य मृदा कार्ड जब किसान बनवा लेगा तो भाई आपको अपनी भूमि की एक एक किले का अनुमान लग जाएगा कि आपके कौन से किले में कौन सी कमी है और कौन सी चीज आपने डालनी है।
1: बिल्कुल।
0: साथ साथ में आपने जल की बात भी करी, जल है तो कल है, तो भाई आज टपका सिंचाई के ऊपर बागवानी विभाग भी बड़ा अच्छा काम करने लग रहा है, या अपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग भी इन चीजों पर काफी जोर दे रहा है और किसानों को पानी बचाने के लिए बहुत सी योजनाओं के तहत हमें किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई आप जल भी बचाएं, अपनी मृदा की जो शक्ति है उसको भी बढ़ा के रखें, और साथ साथ में अगर अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है अगर वो सही रहेगी तो वह हमारा जो कृषक का जो असली काम है वो असली पैदावार लेकर और एक अच्छी गुणवत्ता वाली चीज लेकर देश को देश के है, जिससे अपने देश की जीडीपी में एक अच्छा योगदान दे सके।
1: नरेंद्र भाई, अपन तो जो किसान भाई है ना, सारे ने मिलके ने एक शपथ ठानी पड़ेगी, वह के है कि मिट्टी की तो जांच करवाएंगे, ठीक है, संतुलित खाद का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जैविक खाद का बढ़ावा भी देंगे, पानी की बचत भी करेंगे और धरती माँ का सम्मान भी करेंगे।
0: बिल्कुल भाई, कहने का मतलब यह है कि रासायनिक खादों की बजाय आप अपने जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी तरफ दोबारा से जावेंगे, ताकि आप का स्वास्थ्य भी सही हो, हमारी भूमि का स्वास्थ्य भी सही हो, और भाई देखो जब कृषक है ना बढ़िया अन्न पैदा करेगा तो उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। और कई बार तो देखे हैं कि पूछा जावे है भाई साहब खेत में कौन सी खाद डाली थी, रासायनिक खाद ज्यादा तो नहीं डाली। और कई देशों में जब हमने आयात निर्यात की जब बात हो है तो वहां पर भी इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि वहां किस तरह की गुणवत्ता की फसल है, स्वास्थ्य के लिए वो कितनी लाभदायक है। जब इस तरह की चीजें हम पैदा करेंगे तो हम एक अच्छा मुनाफा लेके अपने देश में एक अच्छा योगदान देते हुए किसान भाई को खुशहाल कर पाएंगे।
1: और साथ के साथ ही खुशहाल तो आप और भी करेंगे, लेकिन नरेंद्र भाई घड़ी का नहीं देखने लग रहे हैं कि घड़ी इशारा कर रही है, अपना कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो अपने बाण सुनीता ने
0: और अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने दे इजाजत सारे बाण भाइयों ने। राम
1: राम, राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी हिसार है। अब से थोड़ी देर में श्रोताओं, आप सुनेंगे कार्यक्रम मारे गांव।

0: नरेंद्र भाई राम राम।
1: और सुनीता बाण आपने भी राम राम, और हमारे गांव कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भी राम राम।
0: राम राम
1: और सुनीता बाण,
0: जी
1: जब
0: भाई।
1: गांव की बात चल रही है, गांव की रुत की बात चल रही है, तो आपसी भाईचारे की, मेल मिलाप की, समाज की पहचान की, और अपने चौपाला में बैठ के जो पहले हाँसी ठट्ठे होया करते, मखौल हुआ करते, और वहाँ बड़े बड़े फैसले भी हुआ करते, और बहुत बहुत काम होया करते कि गांव का विकास कुकर करना है, किस तरह हमने आगे बढ़ना है। अर्थ तो भाई, जब आप चौपाल की संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य की जब बात करेंगे, तो भाईचारे में जो गांव की चौपाल है, उसका जो मेल मिलाप है, उसमें समाज की पहचान किस तरह आगे बढ़ाने का काम करे थी।
0: जी नरेंद्र भाई, आजकल जो कई बालक तो इसे उन्होंने कौन बेरा की चौपाल हो के है,
1: अरे भाई,
0: ना इथाई का बेरा, ना चौपाल का बेरा, ना पर्स का बेरा, क्या ही का कौन बेरा, न्यू कहते हमने की बेरा की हो।
1: और भाई सुनीता, लेकिन हमने जब अपने पुराने बूढ़े बातों की बात करेंगे, अपने जब छोटे छोटे थे,
0: जी
1: तो जब वो चौपाल की बात आओ, तो नाम सुनते हैं आँख्या के सामने, गांव का बरगद, खाट, उक्का, बुजुर्गों की बात, युवाओं की हंसी,
0: और वहां खंड के बांधे बैठे बैठे बूढ़े।
1: बूढ़े, और जो है ना अपनी चाची ताई थी, जो दमन पैर के ने, जो फागण के महीने में जो नाचा करती,
0: जी
1: और कार्तिक के महीने में जब नहान जाया करती, गीत गाती पाया करती, तो वो सारे की सारी चीज है ना वहाँ पर, जो अपनी जो चौपाल थी उसमें बातचीत चला करती कि अपने चाची ताई भाई बंधु किस तरह से एक दूसरे से जुड़ के ने काम कराया करते। और चौपाल सिर्फ बैठने की जगह कौन था थी भाई, कदे कभी भाई सोचदाओ, चौपाल गांव का दिल होया कर दी, जड़ा गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठा करते, खेती बाड़ी की बात होया करती, रिश्तियाँ की बात होया करती, सामाजिक फैसले लिए जाया करते, और बच्चों ने नए नए संस्कार दिए जाया करते।
0: जी
1: चौपाल एक इसी जगह थी जहाँ हर आदमी बिना भेदभाव के बैठ सके था, नुका कर दे रहा परस में बैठ के झूठ नहीं बोला करते,
0: बिल्कुल
1: पंचायत में है ना गलत काम नहीं कराया करते, गरीब हो अमीर हो छोटा बड़ा, चौपाल में तो भाई सारे बैठ के ने, क्योंकि वह सांझी चीज़ थी, और जब सांझी चीज़ में जब बात होया करती, तो भाई उसके एक नए अर्थ निकलिया करते, नए मतलब निकलिया करते, नई नई चीज़ें और पुरानी रीति रिवाजों तक जोड़न का काम कराया करती। और पुराने समय की जो चौपाल थी भाई, उस टाइम है ना कोई टीवी टावी को नहीं हुआ करती, जो आज हम देखने लाग रहे हैं, आज के टाइम में ना टीवी था, ना रेडियो तक भी कौन थे, रेडियो भी बहुत पाछे आए हैं,
0: रेडियो भी उन आदमियां दोहराया करते जो बहुत ज्यादा सक्षम है, वह आदमी जो है रेडियो लिया करते,
1: बिल्कुल। लेकिन जो चौपाल थी ना, वो सारे गांव की जानकारी लेने का एक बड़ा संसाधन था। जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बार तो भाई आया करता, भाई फलाने गांव में यो काम हो रहा है, बड़े यो हो रहा है, सुनीता भाई छोरिया ने इतना बढ़िया नाम कमा लिया, वह छोरी नू काम करने लाग रही, उस ताई ने यो काम कराया, उस बूढ़े ने यो काम कराया, और भाई जब ओड़े ने नई नई तकनीक को गांव में कोई पुरानी चीज आया करती, उसके ऊपर खेत में कौन सी तकनीक रहे भाई, मैं खेत में देख के फलाने ने यो काम करा क्या उस गांव में, तो वो बात जब ओड़े बचा करती, तो फिर ओड़े ने पंचायत में बैठ के बोला अच्छा रहे, फिर तो अपने गाँव में भी होनी चाहिए यह चीज, तो बहुत बढ़िया बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो चौपाल में एक समय तय कर लिया करते, शाम होते होते गांव के जो लोग थे उड़े निपट काम धंधे अपने निपटा के उड़े बैठा करते, खेती की बात कराया करते, मौसम की बात कराया करते, समाज की बात कराया करते।
0: नरेंद्र भाई, पहले तो टेम ही टेम था, ये बड़ियां दोरा टेम में को नहीं, कारण की है कि हमने जो है अपने आप को एक ऐसे गोल दायरे में अपने आप को फिट कर लिया कि हम दूसरे अपने आप उस गोल दायरे के बाहर कुछ देखने को नहीं पाते। लेकिन पहले की था ही बापा ने जी करा मनोरंजन करने का टीवी चला लिया, जी करा मोबाइल पर गाने बजा लिए, जी करा तो और न्यून बिना हांडे। लेकिन पहले की था मनोरंजन का सबसे बढ़िया, चाहे उड़े कितने अमीर तो अमीर थे, चाहे कितने गरीब तो गरीब थे, सारे के सारे एक चौपाल में इकट्ठे बैठे करते।
1: बिल्कुल भाई, आपने बहुत बड़ी बात की, चौपाल है ना समाज में मेल मिलाप का काम कराया करती, चौपाल में है ना बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम,
0: बिल्कुल
1: बात बात में हो जाया कर दे रहे, गांव में तरके जोड़ खोदना है, अरे भाई आपने है ना फलाना काम में करना है, अरे उस गरीब की छोरी का ब्याह है, अरे सारे ने मिलकर ना अपने ब्याह करना है, तो कहने का मतलब न्यू कंधेरा पटा करता, बात बात में है ने ओड़े फैसले हो जाया करते, एक दूसरे से जुड़के ने, और जो बड़े बुजुर्ग थे मान ले कशे में मोटा हो गया,
2: दो बुढ़े उड़ा रहे के बात भाई तने ईसा के कर दिया अरे सुनीता तने यो काम करा था ना ताऊ मैंने तो कौन करा तो आम ओसा में बैठ के ने एक दूसरे की ने सारी बात ना निंटा में जो अपने बुढ़े बुजुर्ग थे उस वक्त जा दिया करते मुन मटाओ किसी बिल्कुल मान्या करते और ब्याह शादी भी आ करते वो गांव की चौपाल में आ करती चाहे कोई अमीर था बरात डटा करती तो भाई कहने का मतलब उसमें हर आदमी सहयोग कराया करता या मान ले भाई कुछ भाई का जगह कोनी नुकाया कर दे रहे वोड़ा चौपाल में खाट गाल दे कोई बात नहीं
0: जी
2: सारा इंसान जी है वोड़ा आंदे जांदे तो हने दर्द मिलांगे बैठांगे बातचीत करांगे बीमार आदमी भी ठीक हो जाया करता
0: बिल्कुल और साथ के साथ मनोरंजन का भी बता दें कि थे
2: तो भाई उस टाइम तो देखो
0: रात ने तो जब बैठा कर दे तो एक तो रागनी
2: बिल्कुल
0: तो सांग वाले आंदे तो सांग देखने जाया कर दे
2: सांग थे बजनी थे तरह तरीके के बात आ करते फिर आपस में हंसी ठिठोले भी आया करते और बड़े मर्यादा में रह के आया करते
0: बिल्कुल नरेंद्र अजय की मिनी भी होना ना तो के कर दे बुड्ढे फिर आपके किस्से बताने शुरू कर दिया करते
2: बिल्कुल
0: और छोटे छोटे अपन जो बैठा कर दे सारे बैठे बैठे बेसंग होंगे जानते लेकिन उनकी बात जरूर सुनिया कर दे क्योंकि उनके अंदर भी एक इतना ज्यादा वो आया करता कि हाँ अगर इनने न्यू कराया तो हम भी किमें और आगे थोड़ा सा और बढ़ के करांगे तो उत्साह बढ़िया करता उसमें कि इस बच्चे ने न्यू कर दिया या फिर हमने हमारा टीम में न्यू कराया था बड़ा कोई तो यह चीज आ रही है तो वो चीजें सारी समझाया करते
2: सुनीता बान मान लो आप सो पहलवानी कराया करते
0: जी।
2: एक भाई का ब्योत को नहीं होता फलाना बड़ा करे पहलवान बड़ा बढ़िया छोरा है
0: बिल्कुल
2: उड़े बात बात मैंने बोला अरे 5 किलो की मेरी तरफ थे फिर दूसरा कंधा 5 किलो की मेरी तरफ कोई कंधा मेरी तरफ तो बादाम भाई मैं इसे नहीं यो चीज दूंगा मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा बात बता में है नहीं मेरा पटाया करता इतनी बढ़िया परंपरा थी लेकिन आज है खत्म होने लग रही है नई चीज तो अपनाओ लेकिन अपनी जड़ ना छोड़ोगे मैं तुम्हें कहूँ
0: बिल्कुल
2: आज आप ठीक है दुनिया आपका हाथ में है मुट्ठी में है आपने बात करी थी भाई मोबाइल का माध्यम था आपने दुनिया ने कड़े तक कड़े कुछ भी देख सके हैं वह बात एक अलग है लेकिन भाई दिला में जगह मारने की जरूरत है आज है ना दूर का तो दोस्त है और घर में बैठे आदमी आपका दोस्त को नहीं पड़ोसी दूर और बोला बम्बई वाला नेड़ है तो भाई कहा अगर है देखो अगर दुख तकलीफ होगी ना तो आपका आसपास का काम होगा और ये चीजें चौपाला में बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से तो करती परिवार में जो आज दूरी बढ़ रही है ना उसके कारण है तनाव बढ़ रहे हैं क्यों आदमी एक आदमी धोरे बैठता को नहीं पड़ोसी पड़ोसी का जानता भी नहीं
0: आपस में
2: बेरा कौन इनका बटे हुआ रहे है कौन इनका आया था पहले नुका दे फलाना सम दिया रहे अरे दूध के गिलास लेके तो बटे हुआ रहे अरे दूध के गिलास अरे फलानी छोरी आई है भाई 10 रुपये तुम भी दे के आइए कहने का मतलब उस 10 रुपया की ने
0: मान
2: मर्यादा थी बहुत बड़ी वो रुपया की बात नहीं थी जो बुजुर्ग आदमी सिर पुचकार के अंदर रहो ना पुराना नोट कैट के अनुकंदा ले बेटी सुनीता तुम जावे है तो उसका भी दिल भर जाया करता मन खुश हो जाया करता ताऊ ने मेरे 5 रुपये 2 रुपये दिए तो एक दूसरे ने कहने का मतलब ये है आपसी भाईचारा करता विवाद कम होया करते युवा बुजुर्ग सीखा करते और समाज ने मजबूती मिला करते
0: भाई देखो आज के टाइम में आज आप बहुत समृद्ध हैं लेकिन जो चीज पीछे छूट गई वो चीज आप नहीं कर सकते क्यों आजकल अब देखा कि बच्चे आदत ज्यादा मानसिक रोग तो पीड़ित हैं कारण के है घर में आप जितने आदमी हैं सबके पास मोबाइल है आपस में कोई बात कौन करता किसी भाईचारे की बात नहीं आपस में आप खेल नहीं सकते बालकन देखा बाल खेलन कर जा खेलने कौन जानते
2: कहन का मान ले कि शारीरिक विकास नहीं मानसिक विकास तो हो गया लेकिन किसी बालक का शारीरिक विकास नहीं है उस टाइम में शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का आया करता आपसी सामंजस्य आया करता जो 70 साल का 80 साल का जो बुजुर्ग जो बात बताया करता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो उनके तजुर्बे थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो चीज देखी थी वो चीज बालक ने बताया करते बेटे दुख सुख में आज क्या है आदमी ने सुख सुख का तो बेरा है छोटी घटना हो जो आदमी टूट जी है वो नुका करते बेटा देख फलाने के साथ नू घटिया मेरे साथ नू घटिया था बेटा लेकिन ये तो आनी जानी चीज होया करें दुख तो नुका करें बोले आज छाया है तो भाई तड़के ने धूप भी आओगी आज बारिश है तड़के सूखा भी पड़ेगा तो हर चीज तो जोड़ा करते सुख दुख कहने एक दूसरे का छाया आया करते
0: बिल्कुल एक समझान का एक अलग तरीका होया करता समझाने तो फिर यूं थोड़ा सा हो जाता अभी दूसरा आपका किस्सा बताता तो नहीं होता वो गणा वो है तो उस चीज ने भूलने की कोशिश करा कर दे एक सारे इकट्ठे बैठा कर दे एक तो एकला बैठा रहे उसने तकलीफ है तो जब ही तो सबसे बड़ा कारण है कि आज मानसिक तौर पर बीमार है इसका एक काम तो उसका नरेंद्र भाई, पहले मजबूत गांव का एरिया सबसे ज्यादा मजबूत नहीं होया करता, सारे इकट्ठे खेलिया करते, पाल पर जाया करते ने,
2: बिल्कुल
0: गिंडी खेलिया करते,
2: ओहो कोई भी खेल खेलना आया करता बड़ा हमें समय से बिठा के एक दूसरे तय
0: चीज का किसी तरीके का नहीं बनता भी ना, इस बालक से थी अपन कुन खेलना, सारे इकट्ठे होके खेलिया कर दे, तो वो शारीरिक मानसिक दोनों विकास अपने इकट्ठे होया कर दे। तो देखो चौपाल जहाँ पे भाईचारा मजबूत करना है ना, वहां पर

0: तो आपने देखो सबसे ज्यादा तो आपस में मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा।
1: लेकिन मेलजोल बढ़ाने खातर है ना मनोरंजन भी कराना जरूरी है। और भाई जद है ना देखो अपने जब परस में बैठे और जो चौपाल की बात करें थोड़े बैठे बाट देखने लग रहे मुड्या पे कि भाई बात बात तो करने लग रहे हैं लेकिन मनोरंजन नहीं कराना तो सुनेंगे रागनी।

தக்கடி.

0: बड़ा अच्छा मनोरंजन भी हो गया और बात अपनी अपने बूढ़े बुजुर्गों के तजर्बे की चल रही थी, लेकिन इन्हें बूढ़े बुजुर्गों के साथ है ना जो युवा पीढ़ी है ना उसने भी समझाने की जरूरत है और उसने भी इन चीजों में भाग लेने की जरूरत है। हम तो ये कहेंगे कि भाई बूढ़े बुजुर्गों के पास जरूर बैठे, उनकी सलाह ले। कई बार हम देखेंगे बुरा बुरा इनने किए, बुरा बुरा बूढ़े ने, हमने इन तो गणा था हमने ज्ञान से, भाई तुमने मोबाइल का ज्ञान होगा, दुनियादारी का उसके थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन जो पुराने तजर्बे हैं उनका ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान ये दे सके हैं। अरे भाई जब आप है ना इनके चरणा में बैठ के ने और आशीष लेके ने, अरे भाई जब आप बात पूछेंगे ने तो बूढ़े बुजुर्ग ने आपने पता नहीं के समाज की सी सी बात बता देंगे जो आपके जिंदगी भर काम आओगी।
1: थोड़ा बहुत बिल्कुल मेरा क्यों, कारण के एक तो मोबाइल का, दूसरा नशे की लत में जो जान लग रहे हैं,

0: आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी

रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो इसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: कभी इस पग में

0: बजता ही रहूं।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।
0: वो जब याद आए

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई यानी पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: याद रखना
1: जो कहीं भी चले तुझे इतनी पसंद हमें याद रखना
0: तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि

0: जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी हिसार है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए श्रोताओं, वक्त हुआ है रात का कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित संदेश आपके, गीत हमारे का आज का ये अंक लेकर आपके साथ इस सफर में बना रहूंगा मैं, शिवानंद वाशिष्ठ। तो आइए गीतों का ये सरगमी सफर करते हैं आरंभ।

आकाशवाणी हिसार सुनने वाले तमाम श्रोताओं को निमंत्रण, आइए पधारिए आकाशवाणी हिसार के अंगना। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित श्रोताओं संदेश, आपके गीत हमारे, और आज का ये अंक आइए शुरू करते हैं हमारे इन तमाम चाहने वालों के साथ। और देखिए श्रोताओं, आपसे एक गुजारिश हम कार्यक्रम के आरंभ में करते हैं कि आप अपना एक ही संदेश हम तक पहुंचाएं, अन्य श्रोताओं को भी अवसर दें, मौका दें। देखिए हम बार बार आपसे प्रत्येक कार्यक्रम में हमारे सभी प्रस्तोता यहां से ये गुजारिश करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना एक संदेश हम तक पहुंचाएं और धैर्य बनाए रखें। लीजिए अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हमारे इन तमाम श्रोताओं के साथ जो जुड़ रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। गांव शेरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हम शामिल करते हैं मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा के संदेश को। इन्हीं श्रोताओं के साथ अब हमारे साथ जुड़ते हैं आकाशवाणी हिसार के इस कार्यक्रम से पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बहुड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। इन्हीं तमाम श्रोताओं के साथ प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, ये तमाम श्रोता रहेंगे गांव खारिया।

जिला सिरसा हरियाणा से। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांव पनिहार चक जिला हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कान्हा लड्डू, ममता और समस्त दहिया परिवार के सदस्य। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करविन करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन अभिजोत, ये तमाम श्रोता रहेंगे करणवीर हाउस भूचौक कैंचिया भटिंडा पंजाब से। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है जिला लातूर से, तहसील ओसा, गांव हिपरसोगा, उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख जुड़ते हैं आकाशवाणी हिसार से। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शैफुल्लाह सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इन तमाम श्रोताओं के साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूवल और पीवी कुलथे। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोता रहेंगे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। और इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से जुड़ते हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहन निवादा जाली, जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल राय। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ है ये कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस गीत के साथ। और श्रोताओं गीत रहेगा, फिल्म रहेगी लोफर, 1973 में आई ये फिल्म। लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज आप सुनेंगे इस गीत में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा। श्रोताओं मोहब्बत जब दिल की गहराइयों में उतर जाए तो हर धड़कन में बस बस उसी का नाम सुनाई देता है, फिर ना दिन का होश रहता है और ना रातों की खबर, बस एक ही डर रहता है कहीं ये प्यार दिल को पूरी तरह अपना ना बना ले। तो सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गीत।

हर दिल अजीज। लता मंगेशकर की दिलकश आवाज को श्रोताओं आपने सुना, और देखिए मुमताज जी मनोहार कर रही थी धर्मेंद्र साहब से इस गीत में। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे। श्रोताओं, इश्क, जी हां मोहब्बत, ये वो जज्बा है जो सांसों में उतर जाता है, हर ख्वाब उसी के रंगों में समर जाता है। जब कोई दिल से इतना करीब आ जाए तो हर लम्हा मोहब्बत का सफर बन जाता है, और ये सफर बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। श्रोताओं, आप जैसे तमाम चाहने वालों का प्रेम हम तक पहुंच रहा है व्हाट्सएप के बहाने इस कार्यक्रम में। तो लीजिए अगला संदेश हम शामिल करते हैं अगले गीत के लिए, और हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आए हमारा नंबर। तो लीजिए उनका नंबर आ रहा है, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर।

मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से हमारे श्रोता जुड़ेंगे कार्यक्रम से। शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान और इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। गांव खारिया ढाणी सिरसा, जिला सिरसा से हमारे श्रोता रहेंगे सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। एमएलबी रोड ग्वालियर से श्रोता रहेंगे सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघारा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और तमाम खुराना परिवार के सदस्य। इन्हीं तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए गांव फरासी जिला हिसार से श्रोता जुड़ते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और समस्त डूडी परिवार के सदस्य। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव रायखाना भटिंडा से हमारे श्रोता रहेंगे परमिंदर सिंह सोनी, रातों करण सोनी, दीपू, वीरपाल, कुलदीप और सीमू। इन तमाम श्रोताओं के साथ मजनू कटीला दिल्ली से रहेंगे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और वेलेस डिकेस्ट्रो। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता फाजिलका, पंजाब, खेड़ा परिवार के सदस्य रहेंगे भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी वाणी और आरबी खेड़ा से के साथ रहेंगे जीवन सिंह बुक। और लीजिए अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोताओं का। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा के जज्बातों को कार्यक्रम में हम जगह दे रही हैं। और लीजिए श्रोताओं अब जो गीत सुनेंगे हम मिलकर, वो गीत श्रोताओं ऐसा है कि जिसकी धुन में इतनी मिठास है कि मन स्वतः ही झूमने के लिए मजबूर हो जाता है। सरगम जो छिड़ती है, जी हां, फिल्म रहेगी सरगम। 1979 में आई फिल्म ऋषि कपूर और जया प्रदा जी पर यह गीत फिल्म आया गया। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब के स्वर आप सुनेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा। इस गीत में श्रोताओं मस्ती भी है, शरारत भी है और सुरों की तो चमक बरसों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। तो आइए सुनते हैं, सुरों में जब मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है तो हर धड़कन भी गीत बन जाती है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं दोस्तों जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है।

मधुर सुरों में सजा ये शानदार गीत श्रोताओं आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की दिलकश आवाज़ें थी। ऋषि कपूर और जयप्रदा जी पर ये गीत फिल्माया गया था। फिल्म थी सरगम, 1979 में आई। और ये अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर। श्रोताओं, अगला गीत आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेकरार है। 1976 में आई फिल्म का ये सॉन्ग रहेगा, ये गीत रहेगा श्रोताओं, और पसंद हमारे इन तमाम चाहने वालों की रहेगी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा।

और इन्हीं के साथ हम शामिल कर लेते हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान के श्रोताओं को, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, ये तमाम श्रोता कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से शेफाली शेफी, डेविस पिमला और सतीश अनिजा, मनाली हिमाचल से हमारे श्रोता रहेंगे हर्ष, विनय, विनीत और रोजस, इन तमाम श्रोताओं के साथ शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर झारखंड के श्रोता सुपाही साही गांव से तमाम श्रोता रहेंगे। देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी, देबेन और तमाम परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे श्रोता जुड़ते हैं। सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना और गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि साथ रहेंगे। इसी गीत के लिए ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गंज डुंडवारा यूपी से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बहरहाल एक श्रोता देखिए, श्रोताओं आप के प्रेम से ही ये कार्यक्रम महकता है, कार्यक्रम बनता है और एक से अधिक संदेश लगातार होने से, आने से स्क्रीन पर फिर नए श्रोता जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और नए श्रोताओं को अवसर नहीं मिलता। तो बार बार गुजारिश श्रोताओं की, एक संदेश आप भेजें और धैर्य बनाए रखें। बहरहाल संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत और कमल साहनी, ये पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल और सुनीता, संगीता रानी जिंदल और अब सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और समस्त खुशदिल परिवार के सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए गांव जाखोद राजस्थान के श्रोता जुड़ते हैं। शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमशूल कमर राही, ये तमाम श्रोता रहेंगे गंज डुंडवारा यूपी से। और लीजिए सादुल शहर से हमारे श्रोता जुड़ते हैं श्री राम कुमार रेवाड़, श्रीमती चंद्रकला रेवाड़ और तमाम परिवार के छोटे बड़े सदस्य। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए अब सुनते हैं उस गीत को श्रोताओं, मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत का नाम ही एक एहसास है। मोहब्बत का एहसास कितना अजीब है ना श्रोताओं, कभी ये दिल को हंसा देता है ये एहसास, तो कभी मीठी सी बेचैनी बनकर हर पल किसी की याद दिलाता रहता है। श्रोताओं इश्क, जी हां, नजरों से शुरू होकर दिल तक उतर गया, एक प्यारा सा एहसास सांसों में बिखर गया, हम समझ भी ना पाए मोहब्बत की धड़कन को और दिल चुपके से किसी का हो गया। तो बहरहाल हम तो बता दें कि हमारा दिल जो है वो तो तमाम आप जैसे रसिक श्रोताओं के नाम है। तो कार्यक्रम का ये गीत सुनते हैं, आनंद बख्शी की कलम से लिखा गया, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और स्वर रहेगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का और फिल्म रहेगी भाई राग।

खूबसूरत गीत श्रोताओं, हमारे तमाम खूबसूरत दिल रखने वाले श्रोताओं ने सुना आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत, हमारे व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम है। और नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर, और नंबर रहेगा 9729253272। एक बार पुनः सुनिएगा, 9729253272।

और लीजिए अब जो श्रोता जुड़े हुए हैं हमसे उन्हें शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के लिए। और गीत नहीं है श्रोताओं, अगला गीत आपको एक कहानी सुनाऊंगा मैं, और कहानी जी राजा रानी की नहीं बल्कि तोता मैना की रहेगी, और संगीत रहेगा रविंद्र जैन साहब का, और तो जाहिर सी बात है गीत भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखा है। बहरहाल किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें रहेंगी और पसंद हमारे इन तमाम श्रोताओं की रहेगी, श्रोता रहेंगे। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, और लीजिए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और इन्हीं श्रोताओं के साथ अब जुड़ते हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के तमाम सदस्य। पटियाली रोड गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के तमाम सदस्य। सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और सुशील अग्रवाल, ये तमाम श्रोता रहेंगे हरिनगर कुरुक्षेत्र से। और इन्हीं श्रोताओं के साथ संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। गांव लोहारू हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और तमाम परिवार के छोटे बड़े सदस्य। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक टावर, जियाउल हक टावर, मोहम्मद उमर टावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे मोहल्ला फतेहगढ़, लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रामा, पाली, सुनील पाठक और तमाम परिवार के सदस्य। नई बस्ती गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। इन तमाम श्रोताओं के साथ मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सत्रह एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गांव चौलहदा पागपत से संजय धींगिया, नमन धींगिया और अपार धींगिया। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनई बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता रहेंगे बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, और जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित्त आहूजा, गांव चूली देशवाली तहसील लादमपुर जिला हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से इनके मित्र रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा, राम निवास पांडू। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया, 1976 में आई फिल्म फकीरा का ये गीत रहेगा। गीत क्या श्रोताओं, एक कहानी आइए सुनते हैं। और प्यार जब मासूम शरारतों में घुल जाए तो हर बात एक प्यारी कहानी बन जाती है, कभी रूठना कभी मनाना तो कभी आंखों ही आंखों में दिल की बात कह जाना, यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत अदा है। आइए इसी अदा को इस गीत के माध्यम से सुनते हैं।

अभिनेता शशि कपूर और अभिनेत्री शबाना आजमी पर यह गीत फिल्माया गया। किशोर कुमार और लता जी की मीठी मधुर आवाजें आप इस गीत में सुनेंगे।

श्रोताओं, आपने गीत सुना, कभी हंसी में छुप जाती है मोहब्बत, कभी बातों में दिल बहल जाता है। कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं मित्रों कि हर लम्हा अपने आप गीत बन जाता है। ऐसे ही सदाबहार गीतों को आप सुन रहे हैं, संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब रुक करते हैं अगले श्रोताओं की ओर, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब हूं हम शामिल। तो लीजिए, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के श्रोता रहेंगे विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। इन तमाम श्रोताओं के साथ मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर के हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान के श्रोता लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इन तमाम श्रोताओं के साथ मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर के श्रोताओं का प्रेम निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। और ये प्रेम निवेदन बड़े ही एहतराम के साथ हम स्वीकार करते हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। बहुत दिनों बाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे पुराने श्रोता। बहरहाल पुनः स्वागत आप तमाम श्रोताओं का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। और लीजिए अब रुक करते हैं रोहतक से गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद की ओर। हरियाणा से हमारे श्रोता जुड़ते हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। इन तमाम श्रोताओं के साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नाज नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। और सहारनपुर यूपी से ही हमारे श्रोता रहेंगे राधा नामदेव। कस्बा बरड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इन तमाम श्रोताओं के साथ रिंग छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का वो गीत जिसे लिया है फिल्म राजा और रंक से। संजीव कुमार और कुमकुम पर यह गीत फिल्माया गया। तो सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत।

राजा और रंक फिल्म का श्रोताओं आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत श्रोताओं बस थोड़ी सी अंतराल के बाद।

श्रोताओं, अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में। इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ, और कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी नगमा आप तक पहुंचेगा। श्रोताओं, बात हम मोहब्बत की कर रहे थे, तो मोहब्बत में श्रोताओं कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब दिल प्यार तो करता है लेकिन शिकायतें भी उसी से होती हैं। रूठना, तड़पना और फिर अपने जज्बातों को गीतों में बयां कर देना, हमारे पुराने फिल्मी गीतों के की खास बात रही है। श्रोताओं, जिस दिल ने सबसे ज्यादा चाहा उसी ने कभी दर्द भी दिया, लेकिन मोहब्बत की यही अदा है दोस्तों कि शिकायत में भी प्यार छिपा होता है। तो आइए, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश आप तक पहुंचेगी और तमाम श्रोता हमारे

जुड़ेंगे। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे श्रोता जो लिख भेज रहे हैं अपना संदेश। और श्रोता रहेंगे ग्राम भीलखेड़ी, तहसील सांगरपुर, सारंगपुर जिला।

ईशान पचेरवाल, योगेश, दीक्षा, उपासना, कुलदीप, धर्मवीर खटक, प्रेम खटक, उमेश पचेरवाल और उपेंद्र पचेरवाल, ये तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं, नए श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल स्वागत श्रोताओं आपका, और इन तमाम श्रोताओं के साथ अब कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं को, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में अब कोई श्रोता ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने संदेश भेजा और हम शामिल नहीं हो पाए। बहरहाल शत प्रतिशत श्रोताओं को शामिल किया गया है। और लीजिए, सिद्धार्थ गुंडानी, अर्चना गुंडानी, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ जुड़ते हैं। तो सुनते हैं तमाम श्रोताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म रहेगी काली चरण, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय पर गीत फिल्माया गया। कल्याण जी आनंद जी का संगीत रहेगा। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने इस गीत को लिखा और लता मंगेशकर की दिलकश आवाज रहेगी।

श्रोताओं, महफिलें खत्म हो जाती हैं, एहसास कभी खत्म नहीं होते। कुछ गीत दिल में उतर जाते हैं, पर फिर भी कभी दिल के एहसासों को वो खत्म नहीं कर पाते, समाप्त नहीं कर पाते। इन्हीं एहसासों के साथ अब दीजिए कार्यक्रम समेटने की अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वशिष्ठ को अनुमति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आकाशवाणी हिसार सुनते रहें, सुनते रहें। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है,

0: आंगली सिविल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अपील टू द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज कॉल. ही अर्ज्ड सिटीजन्स टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड अवॉइड अननेसेसरी परचेज ऑफ गोल्ड. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हिसार है. रात्रि के 11:10 हुए हैं. अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है. कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात. तब तक के लिए दीजिए आज्ञा. जय हिंद.